0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा

0: समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इसे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहुमिया ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहुमिया से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहुमिया का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागाव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. By-elections for 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam will be held today. The 5 assembly seats going to polls are Madurakkam and Dharapuram in Tamil Nadu, Thattachavri in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat going to polls is Nagaon in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the name of 8 candidates for upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Ojha, Prakash Pal, Vidya Sagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar.

0: আজিলৈ অনুষ্ঠান এটা শেষ গান আপুনি কলে শুনিব পালে শিল্পী জ্যোতি প্ৰসাদ।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीट शामिल हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान जारी है। मतगणना 9 अक्टूबर को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन

0: ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000 वे एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष रशद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place at Madhuran Takam and Dharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Thattan Chowdhury in Puducherry and Rejinagar and Nundigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Naugaon in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the name of 8 candidates for upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Ojha, Prakash Pal, Vidyasagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. The names were approved by the BJP Central Election Committee. Today is the last day for filing nominations for the biennial elections. Polling for the Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh, Uttarakhand and by-election to a lone seat in West Bengal will be held on the 16th of this month. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Himachal Pradesh from today. During the visit, President Murmu will attend the convocation ceremony at AIIMS Bilaspur as the chief guest and confer degrees to trainee doctors. The president will also travel to Manali, where she will visit the Hidimba Temple and the Atal Tunnel Rohtang tomorrow. Security measures have been stepped up in hotel areas along major roads and in the vicinity of event venues. Defence Minister Rajnath Singh will mark the delivery of the 2000 Aero engine by Koraput Division of Hindustan Aeronautics Limited in Odisha today. The Defence Ministry said the event will also highlight

0: 남자친구한테 전화하면서 난리 에이 잠안 깨나
1: 나방한테 그래 잔이랑이 나가는 남자와 나한테 지급받 잔이랑 거리 눈통나서 남족봐
0: 맞았다 나만큼었어야 아무 자나스카라고 자나 만나도 빡 알아차야겠다 아무튼 자나스카고 주소가 만나고 난 위잖아
1: 안봐 너 잡혀 때문 자만은 나 사주고대 나이 매일이 남부리는 상황이여봐 맞등 지급받 아로 다른 영토 뽑아 잔이랑 그 왔도하 나이 매일이 남부리는 남마 자아닌 이슈 삼자가 한 곳을 잡고하
0: 야구 고무시나위 버프트 세프티 메가라 실험이겠다 위였대와
2: पापा की जमा पूंजी उनकी सीख
3: और हमेशा हमारी फिक्र करना वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है
2: और क्लेम करना मुश्किल होगा
3: अब और भी आसान हो गया है बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ क्लेम फॉर्म भरो डॉक्यूमेंट्स जमा करो 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: どうもしもん。キョクル、キョクルヘアンプリニットコクナウスカナマンゲニアンスウィチョハナロバーソメア、ロアロガイトリングバギドオンスカイヤ、アロギタラ、ザゴナ。

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत में अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान,

0: परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिंबा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतरण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण के शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरिम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
3: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल कुलपति अशोक विजयपति राजू उद्घाटन समारोह के

0: 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की। विजयम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजयम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
1: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजयम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 1800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत की एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
2: इन माय ओपिनियन विजयम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंड्रम और केरला बट फॉर द होल ऑफ इंडिया। इफ इवन अ फ्रैक्शन ऑफ शिपमेंट्स प्रेजेंटली हैंडल्ड थ्रू द फॉरेन पोर्ट्स लाइक कोलंबो, जबलानी इन दुबई और सिंगापुर कुड बी ब्रॉट बैक टू विजयम, आई एम श्योर दैट वी कैन क्रिएट इनॉर्मस वैल्यू विद इन इंडिया थ्रू ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट इवन अलाइड इंडस्ट्रीज।
0: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजयम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुनरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध है।

0: सेवी इन्वेस्टर जागरूक पत्र, जानकारी के लिए सेवी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सेवी भारतीय ऐप।
1: दांत हाथ खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग दालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है, साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशिद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हुती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है।

0: क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध। अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है। 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। Polling begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and lone Lok Sabha seat in Assam. BJP announces names of 8 candidates from Uttar Pradesh for Rajya Sabha elections. President Draupadi Murmu to be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the 5-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and Naugaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhuran Thakam and Dharapuram assembly seats in Puducherry, for Thattam Chowdhury assembly seat and Rajinagar and Nundigram assembly seats in West Bengal. More from a Kolkata correspondent.
3: The by-election in Nandigram was necessitated after Chief Minister Shubhendu Adhikari, who won both Nandigram and Bhavanipur in the 2026 Assembly election, vacated the Nandigram seat and retained Bhavanipur. Similarly, the Rajinagar seat fell vacant after sitting MLA Humayun Kabir retained Nauda and resigned from Rajinagar. In Nandigram, 16 candidates are in the fray, including BJP's Harshirani Roth and Congress candidate Milan Pradhan. The Trinamool Congress has not fielded a candidate and is supporting Mr. Milan Pradhan. In Rajinagar, 14 candidates are contesting the elections. Among the prominent candidates are Shakar of Sarkar of the BJP, Gulab Nobi Azad of Am Janata Unnayan Party, Rabiul Alam Chaudhary of the Mamata All India Trinamool Congress and Muhammad Abdullah Kafi of the Congress. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
2: The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the names of 8 candidates for the upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Oja, Prakash Pal, Vidyasagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. The names were approved by the BJP Central Election Committee. Today is the last day for filing nominations for the biennial elections. Polling for the Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh, Uttarakhand and by-election to a lone seat in West Bengal will be held on the 16th of this month. The elections will cover 10 seats from Uttar Pradesh and 1 from Uttarakhand. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Himachal Pradesh from today. The President will attend the first convocation ceremony.

0: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये बीजिंग जम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विजयनगरम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा।
1: स्पोकन टू आकाशवाणी न्यूज, सुरेश मैथ्यू, ए प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, सेड दैट विजयनगरम सीपोर्ट इज अ गेम चेंजर इन द मैरिटाइम सेक्टर एंड इज इमर्जिंग एज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047।
2: विजयनगरम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली for Trivandrum or Kerala, but for the whole of India. If even a fraction of shipments presently handled through the foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vilnius, I'm sure that we can create enormous value within India.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 2रे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उड़ीसा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। श्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। गोवा में पोरवोरम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 4 दिन तक इन कार्यक्रम के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

0: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष रशद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बिजली चमकने तथा तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। सिक्किम, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhurtakkam and Dharapuram assembly seats, in Puducherry for Tat Chavadi assembly seat and Rajnagar and Nandigram assembly seats in West Bengal. More details from our Kolkata correspondent.
2: The by-election in Nandigram was necessitated after Chief Minister Shubhendu Adhikari, who won both Nandigram and Bhavanipur in the 2026 Assembly election, vacated the Nandigram seat and retained Bhavanipur. Similarly, the Rajnagar seat fell vacant after sitting MLA Humayun Kobir retained Nowda and resigned from Rajnagar. In Nandigram, 16 candidates are in the fray, including BJP's Hashirani Roth and Congress candidate Milan Pradhan. The Trinamool Congress has not fielded a candidate and is supporting Mr. Milan Pradhan. In Rajnagar, 14 candidates are contesting the elections. Among the prominent candidates are Shakarov Sarkar of the BJP, Gulab Nobi Azad of Am Janata Unnayan Party, Raviul Alam Chaudhary of the Mamata All India Trinamool Congress, and Mohammad Abdullah Kafi of the Congress. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the name of 8 candidates for upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Oja, Prakash Pal, Vidya Sagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. The names were approved by the BJP Central Election Committee. Today is the last day for filing nominations for the biennial elections. Polling for the Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh, Uttarakhand and by election to a lone seat in West Bengal will be held on 16th of this month. The elections will cover 10 seats from Uttar Pradesh and 1 from Uttarakhand. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. During the visit, President Murmu will attend the convocation ceremony at AIIMS Bilaspur as the chief guest and confer degrees to trainee doctors. After the convocation ceremony, the president will travel to Manali where arrangements for her overnight stay have been made. The president is scheduled to return to Delhi on 8th of October. India has voiced support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirming its commitment to the welfare of the Afghan people at the 8th Moscow Format Consultations on Afghanistan hosted by Russia in Moscow. Indian delegation was led by Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Dr. N.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ घूम मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बुरा किसान।

0: बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। विभाजन के बाद विनोद खन्ना का परिवार आ गया मुंबई। यहाँ दिल्ली, मुंबई और देवलाली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे ये आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि मुंबई के सिड्डम कॉलेज से विनोद खन्ना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और इस तरह पहली पहली बार मंच पर उनकी एंट्री हुई।
1: बदतमीजी है।
2: सुनो भाई और सुनो, ये होली को बदतमीजी कह रहे हैं। जो पंचों की राय देखा।
0: हालांकि विनोद खन्ना को बचपन से ही खेलों में रुचि थी, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के तो विनोद दीवाने रहे हैं। बाद में किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग का भी चस्का अपने आप में अपना लिया। हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक विनोद खन्ना की बलिष्ठ अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया।

उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके फिल्मी सफर में कई ऐसे पड़ाव भी आए जो किसी रियलिटी शो की कथानक वाली बात को साबित करते हैं, यानी कथानक की भांति ही लगते थे। सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्म मन का मीत में पहली बार विनोद खन्ना को मौका दिया और बना दिया फिल्म के नायक सोम दत्त के खिलाफ खलनायक। इस फिल्म की नायिका थी लीना चंदावरकर।

0: खलनायकी से शुरू हुआ विनोद खन्ना का फिल्मी सफर मील का पत्थर साबित हुआ। मीरा, इम्तिहान, इनकार और लेकिन जैसी भावना प्रधान फिल्में हों या फिर कच्चे धागे, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी, डाकू और जवान या फिर आखिरी डाकू और मेरा गांव मेरा देश जैसी हिंसा प्रधान फिल्मों में भी वे खूब जमे और जमकर खूब चले।
1: हाथ आई ऐसी अनमोल दौलत को छोड़ दो। जब्बर से इतना पागल नहीं है। तू जिस जमाने की बात कर रहा है उसके तो चंबल की गहराइयों में डूबे हुए भी जमाना हो गया है।

अभिनेता विनोद खन्ना के कैरियर की खासियत ये रही कि उन्होंने हर चुनौती को, हर चैलेंज को स्वीकार किया और निभाया और बाद में अपने करियर को गंभीर भूमिकाओं के जरिए एक नया मोड़ दिया।

फिल्मकार और गीतकार गुलजार ने 1971 में फिल्म मेरे अपने में बतौर नायक के रूप में विनोद खन्ना को चुना, जो उस फिल्म में समकालीन युवाओं का प्रतिनिधित्व कर

यहां से शुरू हुआ विनोद खन्ना के संजीदा अभिनय का सिलसिला, जो रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता रहा और चलता रहा। फिर आई गुलजार की मीरा और

इम्तिहान के इम्तिहान को पास किया और अपने करियर की दूसरी यात्रा में विनोद खन्ना को हासिल हुई लता मंगेशकर की फिल्म लेकिन, जिसमें गुलजार ने उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण और हटकर भूमिका प्रदान की थी। संजीदगी भरे अभिनय का कमाल देखिए कि बिंदास दिखाई देने वाले विनोद खन्ना को फिल्म चांदनी में यह भी पुकारना पड़ा।

0: विनोद खन्ना के रौबदार अभिनय का ये अंदाज भी आपने देखा और सुना होगा दोस्तों।
1: यहाँ एंथनी कौन है?
2: एंथनी? नहीं, इधर कोई नहीं है साहब। वो बाजू के मालूम रहेगा। तुम इधर ठहरो, अपन अभी देख के आएंगे।
1: मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है।
2: ऐसा क्या?
1: जरूर देखोगे साहब, अपन बहुत फेमस आदमी। पेपर में अपन छोड़ो छोड़ो छोड़ो चपटा लक्ष्मी पैर।
3: जिस बुढ़िया को मैंने खून दिया था उसको तुमने भी तो खून दिया था। तुम्हारा नाम ही तो एंथनी है ना?
2: हाँ साहब, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में तो गोंसाल्विस भी लगेला है। एंथनी गोंसाल्विस, ऐसे बोलने का था ना साहब? हाथ मिला।
0: माना माना दोस्तों, अमिताभ का जमाना था, लेकिन विनोद खन्ना में भी वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक सुपर स्टारडम के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब भी बिग बी और विनोद खन्ना साथ साथ आए, टक्कर बराबर की रही।

1978 में अपने करियर के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद ने शरण ली अध्यात्म की और कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी, फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया एक्टिंग का सिलसिला। वापसी हुई और जोरदार हुई। मुकुल आनंद की फिल्म मिली इंसाफ और युवराज सिप्पी ने उन्हें मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए विनोद ने फिर वही मकाम हासिल किया जो उन्हें पहले मिला।

आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन, जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मसरूफ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय।

चल रहा था सिलसिला विनोद खन्ना के एक्टिंग का, और ये खुशनुमा दौर था 1999 में। विनोद खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।

लेकिन एक बात रही कि उन्होंने अब चुनिंदा फिल्मों में काम करने की ठान ली। आपने उन्हें वांटेड और फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में जरूर देखा होगा।

अपनी इतनी लंबी अभिनय यात्रा के बाद 27 अप्रैल 2017 को गंभीर बीमारी की वजह से विनोद ईश्वर को प्यारे हो गए। दोस्तों, यकीनन जिस्मानी तौर पर बेशक विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों और अदाकारी के जरिए वो हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने एक्टर विनोद खन्ना पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है? कलकत्ते से गाना सुन लो, उसका अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आवे सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: बजता ही रहा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपका जीवन संगी।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो किसी धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिनड और डिसाइडेड बाय हिम, तो जिसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: वो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं, नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 2रे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे। फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने यह बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशिद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 148 अंक बढ़कर 72,531 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 54 अंक की वृद्धि के साथ 22,610 पर पहुंचा। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में भारत का सामना आज उरुग्वे से होगा। मुकाबला सॉल्ट लेक के युवा भारतीय क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज केरलम माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Polling is underway for by-elections to five assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madurtham and Dharapuram assembly seats, in Puducherry for Thrittanchavadi assembly seat and Rajinagar and Nandigram assembly seat in West Bengal. The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the names of eight candidates for upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radha Kant Oja, Prakash Pal, Vidyasagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. The names were approved by the BJP Central Election Committee. Today is the last day for filing nominations for the biennial elections. Polling for the Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh, Uttarakhand and by election to a lone seat in West Bengal will be held on 16th of this month. The elections will cover 10 seats from Uttar Pradesh and one from Uttarakhand. Defence Minister Rajnath Singh will launch Fleet Support Ship 1 and lay the keel of Fleet Support Ship 5 at Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam today. He will also inaugurate the upgraded Slipway 4 and 300-ton Goliath crane. Defence Ministry said that the minister will also mark the delivery of the 2000th Aero engine by Hindustan Aeronautics Limited, Koraput Division in Orissa today. A report. The upgraded Slipway 4 with its extended length, enhanced load-bearing capability will enable the shipyard to build and launch vessels up to 45,000 deadweight tonnage. This will significantly expand its capacity to undertake large and complex platforms. The launch of the Fleet Support Ship 1 will replenish warships at sea, extending the Navy's endurance and reach across the Indian Ocean region. The event in Orissa will highlight the establishment of a second production line for Shakti engines with an investment of over 200 crore rupees. The additional capacity will support the growing requirements of indigenous helicopter platforms, including the Dhruv Advanced Light Helicopter and Prachand Light Combat Helicopter. With Shivang Mishra, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
2: Commerce Minister Piyush Goyal met U.S. business leaders in New York and discussed opportunities to further deepen partnership and investments in India. Mr. Goyal met President and COO of Blackstone, Jonathan Gray, Chairman and CEO of Neuberger Berman, George Walker, and President and CEO of the Estée Lauder Companies, Stéphane Delafevrier, yesterday.

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या फिर स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: Simang bikin tu sila ni gitu orang kau kena suara ha, dan semalam ada iman momen ni gitu orang kau matang sekali ya, gitu orang lo pruni bangla bang Sri Sri, aku pangman saksan.

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या फिर स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: Nasimang tingnan mo ni gitong ko kinaswa ha, dahil kung kala chiwa ha, nasimang dilyo ni vid party program ko kinaswa gin. Chisa ba diyo hindi ko bo, chisa ba ba diyo absa station ni English ko bo ko kinaswa gin. Yan akashwa ni Tura.

0: सोशल मीडिया देखते देखते कहाँ एक घंटा निकल गया पता भी नहीं चलता है।
1: तो ये अगर हम एकदम जागरूक होके कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव आएगा।
2: बिल्कुल आपने कहा, कुछ नहीं बहुत ज्यादा बदलाव हम खुद ही महसूस करेंगे और उसके बाद हमें लगेगा कि अरे जिस चीज से हम बच रहे थे या हमने अपने आप को बचाए रखा था वो चीज ही हमारे लिए कितनी जरूरी थी।
1: जी
2: तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का और उसके बाद और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करते हैं। कौन से गीत सुनेंगे आप?
1: सो मेनी कि तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम,
2: ये गाना सुनना चाहती हूँ। फिर जवानी से ये गाना है और आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

ज्योति, हम आपसे अभी बात कर रहे थे जो समस्याएं महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में, एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहते हैं, IVF जिसकी आप विशेषज्ञ हैं, और लेकिन आम महिला आज भी अगर हम ग्रामीण तबकों की बात करें तो शायद इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ है कि क्या है ये शब्द और इसके मायने क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि IVF है क्या और किन परिस्थितियों में डॉक्टर किसी दंपत्ति को

0: वो IVF की सलाह देता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है आज की करंट सिचुएशन में, स्पेशली सिटीज में। ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है, मतलब द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी ताकि ये समझ सके। तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर महीने एक अंडा फूटता है, आइदर राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी से। यूट्रस है, यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स है, हर महीने जब अंडा फूटता है तो जो ट्यूब है उसके एंड पे टेंटिकल्स यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो एग को सक कर देते हैं और वो एग ट्यूब में चला जाता है। और जब स्पर्म्स एग को मिलते हैं इन द ट्यूब तो एक एम्ब्रियो या बच्चा बनता है इन द ट्यूब। और फिर वो बच्चा को ट्यूब के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो एम्ब्रियो को पुश करते हैं इनसाइड द यूट्रस। और जब वो चिपक जाता है यूट्रस के अंदर तो वो पेशेंट को बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी मतलब कि जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है फॉर मोर देन वन ईयर, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी हुई और चलो दो महीने में प्रेग्नेंट होना चाहिए या चार महीने में हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन ईयर के बाद भी जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है वुमेन उसको हम डिफाइन करते हैं इनफर्टिलिटी। तो ये IVF जो है ये एक टेक्निक है इनफर्टाइल पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। यानी जो बच्चा है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो ट्यूब्स में होती है नेचुरली नॉर्मली वो हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस में कहीं पे भी अगर पेशेंट को कोई इश्यू है जैसे अंडे फूट नहीं रहे हैं या अंडे की प्रमाण मात्रा कम है या ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या यूट्रस में क्षमता नहीं है बच्चा रखने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जैसे ट्यूबरक्लोसिस के कारण पूरा यूट्रस कभी कभी अंदर चिपक जाता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो IVF काफी हद तक ये सब प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। तो पेशेंट्स को नॉर्मली एक अंडा फूटता है, IVF में हमको चाहिए कि पेशेंट्स को कम से कम चार पांच या उससे ज्यादा अंडे फूटे, मतलब हमको मिले। तो उसके लिए पेशेंट को हम आर्टिफिशियली इंजेक्शंस देते हैं। नॉर्मली नेचुरली तो एक ही अंडा बढ़ने वाला है, हम इंजेक्शन देके ज्यादा अंडा जितने हो सके उतने पॉसिबल अंडे विद इन लिमिट्स ऑफ कोर्स हम स्टिमुलेट करते हैं, उसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। और फिर वो पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया वो अंडों को बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में या हम बाहर लैब में रखते हैं। फिर हस्बैंड के सीमन को वॉश करके उसके जो स्पर्म्स है इंजेक्ट करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। अगर इंजेक्ट करते हैं उसको इक्सी बोलते हैं, एक फर्टिलाइजेशन अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं बिल्कुल तो इक्सी बोलते हैं, या नेचुरली हम मिक्स कर दें स्पर्म्स के साथ तो उसको प्लेन IVF बोलते हैं। फिर जो बच्चे जो एम्ब्रियोस जो बनते हैं वो हम लैब में लेबोरेटरी में बनते हैं। नॉर्मली जो ट्यूब में मैंने बताया एम्ब्रियो बनता है, ये IVF में लेबोरेटरी में बच्चा को हम मतलब रखते हैं और फिर जो पेशेंट है उसके यूट्रस में हम ट्रांसफर कर देते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज। तो ये प्रोसेस को हम IVF बोलते हैं।
0: जी, तो आपने एक बहुत गहराई से ये बात बताई कि IVF आखिर है क्या। तो क्या हर ऐसे दंपत्ति को IVF की जरूरत होती है जिन्हें गर्भधारण में परेशानी हो रही है, जिसको आपने कहा कि इनफर्टिलिटी बांझपन की जो शिकार दंपत्ति है,
1: ये सबको तो नहीं होती है। कई बार जैसे PCO पेशेंट्स ने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया, बहुत वजन है वजन कम कर दिया, इनफैक्ट इवन 5% अगर वजन कम कर देते हैं सिर्फ 5%, तो भी काफी हद तक PCO के जो चेंजेस है वो रिवर्स हो जाते हैं और पेशेंट नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इनफैक्ट कितने सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बदल के,
0: अच्छा
1: जी, अगर स्मोकिंग है ड्रिंकिंग है वो सब बंद करके, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब जो मैंने बताया, ये सब प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करके, तो काफी हद तक हस्बैंड के स्पर्म्स हम जो नॉर्मली वजाइना में डिपोजिट होते हैं नेचुरल इंटरकोर्स में, यहाँ पे हम IUI में उसको वॉश करके यूट्रस के अंदर डिपोजिट करते हैं। बस कहीं, तो ये एक छोटा सा हेल्प अगर स्पर्म काउंट कम है है।
0: अच्छा, तो कैसे दंपति ये विचार करेंगे, ये डॉक्टर विचार करता है कि आईयूआई से ये काम करना है या आईवीएफ को अपनाना है?
1: ये पहले तो यस, ये पहले सब टेस्ट होती है। ये मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वुमेन के कारण बच्चा नहीं है। ये जो नॉर्मल हमारे लोग समझते हैं कि लेडी में ही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं है। काफी हद तक है, उससे 40% चांस ये है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम
0: समस्या होती है।
1: ये तो कई बार दोनों में होती है, कई बार हस्बैंड में होती है, लेडी में नहीं होती।
0: लेकिन
1: ब्लेम होता है खास करके विलेजेस में तो बहुत ही
0: डिफिकल्ट। गाँव में तो इस बात को आज भी माना जाता है कि बांझ है, उसे मतलब बुरा सुनना है। आज इन चीजों से पर्दा उठा है कि महिला और पुरुष दोनों ही बांझपन के कारण हो सकते हैं।
1: और एक दूसरा है कि जो अपने कल्चर में बेटा बेटा स्पर्म्स यानी हस्बैंड के जेनेटिक मटेरियल से बनना, जब बेटी होती है तो सब बोलते हैं कि तेरे कारण बेटी, बट एक्चुअली हस्बैंड वाज रिस्पांसिबल टू गिव आइदर अ गर्ल, लड़की या बॉय।
0: जी बिल्कुल सही कहा, इस पर से भी लोगों का अभी काफी भ्रम उतरा है। तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का,
1: तेरे मेरे होठों पे चांदनी फिल्म,
0: चांदनी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: की जो इनफर्टिलिटी है यानी बांझपन है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं किसी महिला में या पुरुष में बांझपन, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि जो दंपति उस दौर से गुजर रही है उन्हें आप क्या सलाह देंगी।
1: जी, मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया। तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, जैसे ओवरी में प्रॉब्लम है, अंडे फूट नहीं रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक्ड है, या लाइनिंग सही नहीं है, बहुत पतली है, या हस्बैंड में स्पर्म काउंट, एक सर्टेन स्पर्म काउंट होना जरूरी है, उससे कम हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ये सब इन्वेस्टिगेट करें, अपने डॉक्टर को मिले, इन्वेस्टिगेट करें, डिसाइड करें कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर सही तरह से उसका इलाज करें। मतलब IVF ऐसा नहीं है कि IVF करने से 100% है, इनफैक्ट सक्सेस रेट ऑफ IVF सिर्फ 30-40% ही है। तो ऐसा नहीं है कि IVF से हो ही जाता है सबको, तो ये भी बहुत
0: जरूरी है। तो जब बात हम कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी के शिकार कुछ दंपतियां हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और उसके बाद जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी है, जिसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, अगर ये है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और हर दंपति में जो मतभेद या मनमुटाव हो जाते हैं इन इश्यू को लेकर, उन्हें भी हम दूर करना चाहेंगे।
1: जी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कि वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है।
0: अच्छा,
1: ठीक है, यानी कोई अबॉर्शन भी नहीं हुआ है, मतलब कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि आइधर उसको पहले बच्चा है और अब नहीं हो रहा है, या पहले अबॉर्शन हो चुके हैं एक दो या ज्यादा और अब नहीं हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास जाएं, दोनों अपना टेस्ट्स कराए हैं और फिर लेट द गायनेक डिसाइड करे कि इनको क्या ट्रीटमेंट। पेरेंटहुड एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल विमेन आर वर्किंग, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही है फाइनेंसेस में, घर चलाने में, तो ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जितना कि एक वुमन को रहना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे में ही प्रॉब्लम है, तो ये एक चेंज होना जरूरी है। बिकॉज स्पर्म काउंट जब कम रहता है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इनफर्टिलिटी का। तो मतलब अगर प्रॉब्लम हस्बैंड में है, अगर हम वाइफ को ट्रीट करें तो वो कैसे ही प्रेग्नेंट होगी। अगर उनका अल्कोहल या टोबैको सेवन है तो वो भी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कपल आके हस्बैंड डिस्कस करे जो भी इश्यूज है, उसको
0: डॉक्टर के सामने
1: रखें और फिर उसको से डील करें। क्योंकि ये जॉइंट डिसीजन होना चाहिए कि दोनों ही रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जन रेडी नहीं है और एक जन को, दोनों को सेम पेज पे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे।
0: यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जब आपको परिवार आगे बढ़ाना है तो दोनों को मिलकर सोचना होगा, डॉक्टर के पास जाकर इस समस्या का हल लेना होगा।
1: ये जो फर्टिलिटी जो है, ये मैक्सिमम जो है ये अपनी 20s और अर्ली 30s में होती है। अर्ली 30s यानी 35 के पहले फर्टिलिटी जो है, नेचुरल फर्टिलिटी जो अच्छी रहती है, आप अगर डिले ना करें ज्यादा प्रेगनेंसी, बिकॉज नहीं तो फिर आपको ट्रीटमेंट की या डॉक्टर की हेल्प की शायद जरूरत पड़े, ऐसा है। और दूसरे की अगर शादी नहीं हुई है, एक फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आपके अंडे फ्रीज कर दिए, या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो आप एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हैं। एक बार एक डॉक्टर गायनेक को डेफिनेटली मिल ले, जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी अगर करें, जैसे देयर आर सर्टेन डिजीजेस लाइक थैलेसीमिया जो एक ब्लड डिसऑर्डर है, जहाँ पे आपके जो बच्चे हैं उनको हर हफ्ते या हर 10 दिन या हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो थैलेसीमिया। तो वो अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सर्टेन टेस्ट करते हैं, तो काफी हद तक ऐसे बच्चे को आप इस दुनिया में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आप अवेयर होने चाहिए उस चीज के बारे में, सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, अगर वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में अगर हो जाता है तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए वो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाके कि मुझे अभी प्रेग्नेंट होना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, विटामिन लेने होते हैं, फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये सब तो ऑलवेज बेटर है कि एक बार एक विजिट करके आए, खास करके अगर आपकी शादी

0: हुए हैं तो
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है? सुनते हैं आपकी पसंद का है कि
0: चलते

0: को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की है और अब आखिर में कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आम महिला के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि 40 पार की जो महिलाएं हैं किस तरह से ओवरऑल अपना चेकअप कराएं साल में महीने में छह महीने में किस तरह से अपनी दिनचर्या वो सेट करें किस तरह से डॉक्टर के परामर्श से अपना जीवन यापन करें
1: जी तो जैसे हम बोलते हैं कि चाहे औरत हो या मर्द हो हम 40 साल या 35 साल के बाद सर्टन ब्लड टेस्ट सर्टन टेस्ट जो बॉडी चेकअप जो टेस्ट कराते हैं वो तो करानी ही है दोनों को इसके अलावा एज अ वुमन थोड़े से स्पेसिफिक टेस्ट है जैसे सर्वाइकल कैंसर थैली के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है और एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर्स के लिए रेगुलर सोनोग्राफी होती है तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे ही सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है उसके 3 साल के बाद पैप टेस्ट हर साल कराना चाहिए पैप टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है एक ओपीडी में ही होता है एक 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं पैप टेस्ट के लिए तो ये हर लड़की या हर वुमन को जाना चाहिए पैप टेस्ट करने के लिए फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग फॉर कैंसर सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में नंबर वन कैंसर है सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर की प्रमाण मात्रा ज्यादा है तो उसके लिए है मैमोग्राफी मैमोग्राफी एक एक्सरे है एक टाइप ऑफ एक्सरे जिससे हमको छोटा सा कोई भी गांठ जो वैसे पता नहीं चलता है लेकिन मैमोग्राफी में पता चलता है इसके अलावा एवरी वुमन हर पीरियड्स के बाद या मेनोपॉज के बाद कि कोई गांठ या निप्पल्स में से कोई डिस्चार्ज आना कोई ब्लडी डिस्चार्ज आना या स्किन एक साइड पे खींची हुई है या कुछ भी अलग दिखे अदर देन रूटीन तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है खास करके आफ्टर 35-40 फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड सोनोग्राफी जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए वन सोनोग्राफी वंस एवरी ईयर ये करना बहुत जरूरी है दिस इज माई मैसेज टू ऑल वुमेन कि रेगुलर चेकअप जैसे आप अपना हीमोग्लोबिन कराते हैं थायराइड चेकअप कराते हैं लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग करते हैं ईसीजी निकालते हैं अपने आईज टेस्ट करना है ग्लोकोमा के लिए या चश्मे के लिए स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं ये सब के अलावा ये टेस्ट भी बहुत जरूरी है
0: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि महिला को आमतौर पर कितना सचेत रहना चाहिए जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं डॉक्टर ज्योति शाह आपने विवेक भारती के स्टूडियो में आकर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे पीसीओडी और आईवीएफ इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले अब दीजिए इजाजत नमस्कार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावडी तथा पश्चिम बंगाल की रिजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम के नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपर 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे, डीआईवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश कर रही है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इसके लिए विपक्षी पार्टियां देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अपमानजनक बातें कह रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और EVM को निशाना बनाती रही है। श्री पात्रा ने आगे कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहा सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 25 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति बोला टिनुबु ने हादसे की पुष्टि करते हुए नाइजीरियाई वायुसेना को दुर्घटना के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। और अब कुछ खेल खबरें। भारत वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में आज भारत और उरुग्वे आमने सामने होंगे। मैच सॉल्ट लेक के युवा भारती क्रीड़ांगण में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्री कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: Nak simang handam mawak ni gitu rongko kena suaha dan nak simang na hejuk sama ni gitu rongko agak matang sekai nga gitu rongko nga pagri bonga aru nomor rongba matam deh.

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: Buat kami nak simang sasun ketan ni gitu kat mata ni semua yo. Hejek sama ni gitu rongkok kena suaha. Tahu tak kesan ni tak menolak simang nak menggeben program kau kat mata gen. Yan akashwani tura.

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लेवरी 4 और 300 टन क्षमता वाले गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटी डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टांसावडी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माही, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी चुरान असमांग हिंदी खबर को खुना स्वाहा समय 9:30 बजे मिनट।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है, मुझे पता भी नहीं था जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो किसी धरती गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिनड और डिसाइडेड बाय हिम, तो जिसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: वो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गरम खून। इसे संगीत में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अंजाम का लिखा हुआ कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध की आवाज सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम खून पसीना।

0: और वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। देखिए बात और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर लिया ना ले जाओ, चादर भी इतने बड़े हैं मार्केट में। तो
0: 6 अक्टूबर सेलिब्रेट के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। गीतकार गुलशन बावरा है और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: के सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिरो दिन राम।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर

0: दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधु खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। और लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में सुनिए। फिल्म का नाम है हेरा फेरी। इसे इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज याद किया मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना को, और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दोस्तों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए आज फिर आपसे हमारी मुलाकात हो रही है ना? और दोस्तों, कुछ मुलाकातें बस मुलाकातें नहीं होती, वो एक एहसास बनकर दिल में उतर जाती हैं। तो आज के सुरीला सफर में चलिए उन्हें खास मुलाकात की गलियों में, जहाँ पहली नजर, पहली बात और पहली मुलाकात एक खूबसूरत याद बन गई हमारी जिंदगी में, उसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। हमारी इबारत आज क्या है आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम अपनी इबारत या यूं कहें टेक्स्ट पढ़ देते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी में भी वो पहली मुलाकात किसी से भी हो सकती है, उसका जिक्र आप भी अगर करेंगे तो कार्यक्रम और भी अच्छा लगेगा और ये मुलाकात और रोचक हो जाएगी। हमारी आज की इबारत है, आपको अपनी पहली मुलाकात याद है? कभी वो पहले पहले प्यार की मुलाकात जैसी खूबसूरत रही होगी, कभी कुछ और कभी लगता है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, बस इसी ख्याल से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वैसे सच कहे तो कई बार ये मुलाकात एक बहाना है, असली बात तो दिल की होती है। और किसी खास से मिलकर लगे तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, फिर दो बेचैन दिल मिल जाएं तो दो चैन चाहने वाले, दो चैन ना चाहने वालों की मुलाकात हो सकती है। और पता ही नहीं चलता कि कब छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई है। फिर लगता है जैसे मुलाकातों का मौसम आ गया, मगर कुछ मुलाकातें इतनी हसीन होती हैं कि कल की हसीन मुलाकात के लिए आज की रात की यादों में कट जाती है। और कभी कभी दिल डरता है कि कहीं जाने वाले से मुलाकात न होने पाए। तो बस आज के इस सफर में मुलाकात के इन्हीं रंगों से हम रूबरू होने वाले हैं। चलिए तो सुनते हैं कार्यक्रम में कुछ खास गीत, ऐसे गीत जहां मुलाकातों का जिक्र है और जिंदगी की कुछ खास मुलाकातें हमारे साथ उम्र भर चलती हैं इन गीतों की तरह। किशोर कुमार और आशा भोसले, फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

किशोर कुमार और आशा भोसले को भी आपने सुना, फिल्म का नाम था द ग्रेट गैम्बलर। हमारे श्रोता अपनी अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं अपनी टिप्पणियों के तरह से। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं, मगर अपने पीछे भावनाओं की ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो वर्षों तक मन में ताजा रहती हैं। पहली मुलाकात की झिझक, आंखों में छिपी अनकही बातें, दिल की बढ़ती धड़कन और किसी अपने के साथ बिताए कुछ पल, इनमें एक पूरा संसार समाया होता है। कभी कोई मुलाकात प्यार की शुरुआत बन जाती है तो कभी किसी बिछड़े हुए शख्स से आखिरी मुलाकात जीवन भर की स्मृति। मुलाकातें जिंदगी की किताब के वे पन्ने हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात और बिछड़ना, फिर उसी मुलाकातों की याद में खो जाना, अगली मुलाकात तक प्रेमियों की तड़प आज के गीतों में है। एक श्रोता ने लिखा है कि पहली मुलाकात, प्यार की मुलाकात, यादगार मुलाकात और बिछड़ने के डर तक, ये सभी एक बातें इस मुलाकात में शामिल है। कुछ मुलाकातें पल भर की होती है लेकिन उनकी यादें उम्र भर दिल में रहती है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी जिंदगी में अचानक कोई मिलता है और हमें पता भी नहीं चलता, वो मुलाकात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली है। पहली मुलाकात में कितनी अजीब होती है ना कोई वादा ना कोई रिश्ता, बस दो अजनबी होते हैं लेकिन जाने न जाने क्यों एक शख्स बिल्कुल अपना सा लगता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुलाकात यानी दिलों का काव्यात्मक सफर, ये केवल सवाल जवाबों का सिलसिला

चल जाते हैं। शायद हम दोबारा कभी उनका चेहरा भी न देख पाए, न ही उनका नाम याद रख पाए, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात के दौरान मिली मुस्कान, उनकी कही कोई गहरी बात या उनका वो निस्वार्थ व्यवहार हमारे भीतर हमेशा के लिए जिंदा रहता है। बहुत सुंदर। अगला गीत सुनने से पहले आपके लिए हम लाए हैं दो सवाल, बहुत प्यारे से और सीधे साधे से। आप अपनी जिंदगी को, अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को, अपने अनुभवों को जब खंगालेंगे तो उसका उत्तर दे पाएंगे। हमारा पहला सवाल है कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आज तक आप नहीं भूले। सवाल एक बार फिर से कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज तक नहीं भूले। कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में गहरी बात। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात नहीं लगा कि अरे ये इंसान मेरे लिए कुछ खास है। सवाल एक बार फिर कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही आपको लगा कि इंसान मेरे लिए बहुत खास है। खंगालिए अपनी यादों को, अपने दिल को, अपनी जिंदगी को, अपनी स्मृति को। याद कीजिए वो दिन जब आपको कोई ऐसा शख्स मिला, वो कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, है ना, कोई भी। या आपने किसी जगह पे जाकर प्रकृति से मुलाकात की हो, आपको लगा हो कि वाह क्या क्या सुंदर नजारा है। मुलाकात कहीं भी किसी से भी किसी भी रूप में हो सकती है। ये आप सोचिए कि आपकी वो पहली मुलाकात कौन सी थी जिसे पाकर आप धन्य हो गए या आपको आज तक याद है उनके कड़वे अनुभव। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम पराया धन, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन।

जी हाँ, तो पहली मुलाकात इतनी ही रोमांचक होती है, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, उसका ही जिक्र आपको करना है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कितनी लंबी जुदाई, एक मुलाकात के लिए तरस रहे थे नैना, लेकिन जितनी लंबी जुदाई थी उतनी ही प्यार से सराबोर थी वो मुलाकात। अरे आपने इशारों इशारों में बात लिखी, लिखते कुछ तो हमें पता चलता कि कौन सी थी वो मुलाकात। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गीतों को चुना गया है, मुलाकात जैसे शब्द को परिभाषित करने के लिए, वैसे तो मुलाकात कब किससे और कहाँ जीवन के किस मोड़ पर हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, परंतु कुछ मुलाकातें जीवन भर याद आती हैं। हाँ तो बताइए ना, कौन सी ऐसी मुलाकात थी आपसे जो जीवन भर से आपको याद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें भी कितनी अजीब होती है, वैमनस्यता के सारे जख्म एक पल में सी देती है, ना कोई शिकायत बचती है ना कोई गिला, बस निगाहें झुकती है और ये सब कह देता है। मुलाकातें भले ही चंद लम्हों की, पर उनकी खुशबू उम्र भर यादों के गुलदस्ते में महकती रहती है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें ही मोहब्बत की मंजिल मुकम्मल करते हैं, ये वो मंजिल है जहाँ मिलकर महबूब और महबूबा एक दूसरे के मुखातिब होकर मानसिक मनोमालिन्य दूर कर मिलन के मधुर मर्म का संज्ञान लेते हैं। आपसी और मनमुटाव दूर करने में मुलाकातें ही महत्वपूर्ण माध्यम है, वरना मोहब्बत के मारों को इस मोहब्बत में तृष्णा भांति अतृप्तता ही महसूस होती है। और आगे आपने हमारी तारीफ में भी लिखा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सफर तो क्या विविध भारती ने जिंदगी में सुरीली कर दी है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने 36 साल पहले का वो दिन याद करा दिया, जब मैं अपने पहले और आखिरी प्यार से पहली बार मिली थी, यानी मेरे पति देव, वो उससे मिलने आए थे, साथ में उनकी दीदी भी थी और हम पूरा दिन साथ साथ रहे, शॉपिंग की और फिर 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। ये मुलाकात एक बहाना है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अगला गाना यही आने वाला है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुलाकात याद नहीं बनती, मगर कुछ मुलाकातें दिल में ऐसी उतर जाती है कि वक्त बीत जाता है पर उनकी याद कभी नहीं जाती। वही एक श्रोता का कहना है कि क्या जिस दिन हम विविध भारती से मिले उसे भी प्यारी मुलाकात कहा जा सकता है, पर हमें उस मुलाकात की ना तो तारीख याद है ना ही दिन, बस इतना याद है जब पापा विविध भारती चलाते थे तब हम

तो रही आप चुलबुली और प्यारी दिखती हो, क्या बात है, बहुत सुंदर, शुक्रिया, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि ये भी एक तरह से आपसे मुलाकात ही हो गई, रूबरू न सही पर हुई तो। हाँ बिल्कुल होती है आपकी और हमारी मुलाकात तो। वही एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबादत मुलाकात पर आधारित है और आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। जी हाँ, देखिए हो भी गई। एक श्रोता ने कहा है कि बस कुछ टाइम से ही मैं कमेंट करने लगी हूँ और मैंने इस कार्यक्रम में अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, आपकी आवाज भी अच्छी लगती है। चलिए, आपने शुरू कर दी है तो इस शुरुआत को अंत तक रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है, जब आप किसी से दिल से मिलना चाहते हैं और वो मुलाकात नहीं हो पाती तो यह अधूरी चाहत आत्मा को बहुत गहरी बेचैनी और तकलीफ दे जाती है। इसे ही शायद लोग इंतजार का दर्द या अधूरी मुलाकात की कसर कहते हैं। जब मन भावनाएं गहरी हो तो ये दूरी और भी ज्यादा भारी महसूस होती है और ये सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात नहीं होती, ये किसी से भी हो सकती है, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार। तो समय रहते मुलाकात करके गिले शिकवे दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सिर्फ अफसोस ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए सुनते हैं ये गीत खानदान फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श लायलपुरी की रचना और खय्याम साहब की धुन। आप भी अपनी जिंदगी की वो मुलाकात

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात लिखी है, लेकिन इससे पहले हम सवाल दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज भी भूले नहीं। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान तो मेरे लिए बहुत खास है। तो हमारी श्रोता लिखती है कि चेहरे की रौनक छीनने वाले से कभी मुलाकात न हो तो बेहतर है, ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम किसी से मिलते हैं और सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करता, आपको ठेस पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो ऐसी मुलाकात कोई भी नहीं करना चाहता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी अनजाने लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ यादों में बस जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। कभी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होती है तो ये दिल में बस जाती है और मिलने की चाहत बढ़ जाती है और हम सफर भी बन जाती है। आज उनसे पहली मुलाकात, ये जो गाने हैं इन्हें पसंद हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कोई मुलाकात कितनी अजीब होती है, न कोई तैयारी न कोई उम्मीद, न ये आभास की सामने आया ये अजनबी कभी इतना अपना हो जाएगा, बस कुछ पल में कुछ अनकही बातें आंखों के बीच ठहर गया, एक अनजान सा संवाद, कुछ रिश्तों की नियति साफ चलना नहीं, याद बनकर उम्र भर साथ रहना होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में बड़ी देर से मिलते हैं मगर उनसे मुलाकात दिल में ठहर जाती है, उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में उनकी जगह हमेशा से खाली थी। जिंदगी में कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती न मुलाकातें, कभी कभी किसी विशेष से मुलाकात उस ईश्वर की मौन कृपा तरह है जो ये एहसास दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप किसी के लिए पूरी दुनिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, आपकी अंतिम पंक्ति ने दिल जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंदीदा प्रस्तुतकर्ता हैं आप। अच्छा, आज मैंने पहली बार कमेंट किया है, प्लीज आप पढ़िए, प्रोग्राम में रोज सुनती हूँ। देखिए हमने कर दिया, आपने कुछ लिखा नहीं, आप लिखती तो हम उसे भी पढ़ देते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली मुलाकात हमारी हुई थी जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा जॉब लग गया, दोनों घरों के बड़ों के द्वारा हमें पसंद करने के बाद मेरी होने वाली धर्मपत्नी और मुझे अजमेर के रेस्टोरेंट में पहली मुलाकात कराई गई। वो जो नजरें झुकाए बैठी थी और मैंने मन में माता रानी का शुक्रिया अदा करते हुए मन में ठान लिया था कि बस यही है मेरे सपनों की रानी, बाद में अकेले में खूब बातें भी करी थी। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूली जीवन में ट्यूशन पढ़ने के दौरान मेरी गलतियों पर मास्टर जी के डांटने पर उसकी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना, फिर नजरें झुका लेना, उफ, पहली मुलाकात ऐसे ही मुस्कुराने पर कई महीनों तक चली, कुछ हुआ तो नहीं मगर वो मुस्कान बनी मुलाकात अभी भी दिल को कोरेद देती है। आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए हैं जनाब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। अरे तो लिखते हैं, अगर आपको पहली एक तरफा प्यार हुआ था तो बताते कैसे हुआ क्या हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार नहीं होता, विश्वास होता है, बाद में प्यार होता है। ये अपने अपने अनुभव होते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सफर की हर मुलाकात यादगार बन जाती है और आपका साथ भी बहुत अच्छा लगता है, सुंदर गीत के साथ छोटी सी मुलाकात प्यार बन जाती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हमारी मुलाकात सुरीला सफर से हो जाती है तब किसी अन्य की मुलाकात की जरूरत होती ही नहीं है। जब आप किसी कमेंट्स को पढ़ने के बाद कहती हैं कि वाह क्या बात है क्या बात है, बस मजा आ जाता है, बस आपका ये सिलसिला बना रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। अरे आप लोग इतनी शानदार समीक्षाएं भेजते हैं, टिप्पणियां भेजते हैं तो वो निकल जाता है मुंह से कि वह क्या बात है, दाद देनी पड़ती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हाँ, मेरी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात एक पार्क में हुई थी, याद है मुझे आज तक। अरे बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकात जीवन में ऐसी होती हैं जो भूल कर भी याद रहती हैं, कभी कभी ख्यालों में वो मुलाकात यूं ही याद आ जाती है। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें वक्त के दायरे से परे होती हैं, वो घड़ियों के सेकंड या मिनटों में नहीं बल्कि उस शिद्दत से नापी जाती हैं जिसे दो रूहें एक दूसरे को छू लेती हैं। वक्त का पहिया भले ही आगे निकल जाए पर दिल के किसी कोने में वो एक पल हमेशा के लिए कैद हो जाता है। उन्हीं पलों की खामोशी में एक ऐसी आवाज होती है जो भीड़ में भी तन्हाई का एहसास नहीं होने देती और जिंदगी के लंबे सफर को एक मीठी महक से भर देती है। बहुत बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत गहरी बात आप लोगों ने लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी मुलाकात पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, बहुत पुरानी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहब्बत जिंदगी है। सुना है इस फिल्म का नाम आपने, बताइएगा अगर सुना है तो। और इस फिल्म में कौन कौन थी भी बताइएगा। SH बिहारी के बोल हैं और OP नैयर की धुन।

तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही सुंदर विचार लिख रहे हैं कि क्या लिखा है, हाँ लिखा है कि नमस्कार, मुलाकात अजनबी से हो, पहचान वाले से, छोटी हो या बड़ी, समाज में चलता रहता है। कुछ मुलाकातें तो सीने में याद बन जाती है, किसी से मुलाकात में डर भी लगता है और कोई मुलाकात प्यार में बदल जाती है और कई मुलाकातों से आपसी गलतफहमियां भी दूर होती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात फेस टू फेस नहीं बल्कि ऑनलाइन एक दोस्त से हुई और पहली बार ही एक विशेष प्लेटफॉर्म पर पता चला। पता नहीं क्यों उनके नाम के आगे रुकी और कुछ दिनों पश्चात ही उनका मैसेज आया और हमारी बात हुई। ऐसा लगा जाने कब से एक दूसरे को जानते हो पर आज तक कभी मिले नहीं हम। एक रिश्ता रूहानी था जहां देखने की कभी चाहत ही नहीं हुई। क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात लिख दी आपने। और आपके इस बेबाकी को हम सैल्यूट करते हैं कि आपने अपनी बात, अपना दिल हमारे सामने रखा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो कहूंगी कि आदमी किसी से भी मिले तो कभी नहीं बिछड़े। मैं दो शख्स को हर दिन तलाशती हूं। पहली मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी, नाम था उषा शाह। इन दिनों नहीं मिल रही हैं और मैं वो असम में थी और मैं भागलपुर में। दूसरों में जब मैं दिल्ली में थी तो वो मिली, सिर्फ ये पता कि वो उत्तर प्रदेश में थी। उनके लिए भी मेरे मन में बहुत बेचैनी होती है। आपने अपनी बात को थोड़ा सा सिलसिलेवार नहीं लिखा इसलिए हमें पढ़ने में दिक्कत आई है। कुल मिलाकर ये पता चला कि आपकी दोस्त आपसे बिछड़ गई है जिसको आप ढूंढ रही हैं, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अभी 3 अक्टूबर को इला अरुण जी से आपकी मुलाकात हुई। इससे पहले इला अरुण जी ने इस मुलाकात में मोरनी बागा नाचे

पर सभी महिला उद्घोषकों को नृत्य करवाते जिसमें आपका नृत्य भी देखने लायक था। ये मुलाकात आपके लिए यादगार बन गई होगी। ऐसे ही कई मुलाकातें हैं मेरे साथ भी हुई। उन दिनों मेरी पोस्टिंग संसदीय ग्रंथालय में थी, वहीं पर लोकसभा टेलीविजन के स्टूडियो में भी थे, जो अब भी है। चमड़े से बनी सफेद चप्पल पहने, सफेद पतली कटारीदार मूछें, सिर पर सारे सफेद बाल, सफेद रंग का ही कुर्ता पजामा पहने एक लंबी कदकाठी के व्यक्ति चले आ रहे थे। उनसे एक मुलाकात, नाम से इंटरव्यू होना था। इस पूरे इंटरव्यू को मैंने स्टूडियो में बैठकर देखा। इंटरव्यू के बाद मैंने उनके पैर छुए और जलपान के बाद उन्हें छोड़ने गेट तक आए वो सफेद कुर्ता पाजामा पहने शख्स थे, गीतकार गुलजार साहब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आज मुलाकात पर सुरीला सफर चलेगा ये वाक्य याद आ गया। देखिए, आपने अपने दिल को खंगाला ना। गाने तो आपने सारे गद्यांश में लिख ही दिए थे, इन मुलाकातों के बीच एक गीत भूल गए जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है, पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपने दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई। बहुत सारे गीत हैं मुलाकातों पर, है ना। और वहीं एक शख्स लिखते हैं कि अपने शहर में घूमते समय हमारे देश के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर से अचानक मुलाकात हुई और पहली बार ऐसा लगा कि मुझे भ्रम हुआ, पर पतिदेव ने कहा कि ये वही हैं जो हम सोच रहे हैं। फिर हमने उनके पास जाकर हाय हेलो किया और ये मुलाकात यादगार बन गई। बहुत सुंदर, आपने हमारे सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज जाते समय अक्सर मिल जाते थे, कॉलेज जाना क्या छूटा, मुलाकात होना ही बंद हो गया। अरे क्या बात है, ऐसी बात, चलिए क्या कहूं मैं आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ देर से पहुंचे हैं आपके कार्यक्रम में लेकिन आखिर मुलाकात हो ही गई है, विविध भारती से इतना प्यार जो है, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि मध्य प्रदेश इंदौर से 12 किलोमीटर दूर गांव जामनिया खुर्द से कन्हैयालाल और कई लोग मिलकर आपकी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसा ही हम चाहते हैं। बहुत सुंदर, आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि जवाबी संदेश दिया आपने, यानी हमारे सवाल का जवाब दिया है कि टीचर की पोस्ट देनी थी, मुलाकात कहनी थी, कम शब्दों में दिल जीतने वाली बात, अनपेक्षित सवालों का आघात बन गई थी बुरी हालात, फिर भी न जाने कैसे मिल गई थी नौकरी की सौगात, बहुत सुंदर। और एक श्रोता कहते हैं कि उस जमाने में तो सब कुछ अरेंज करके ही किया जाता था, इसलिए पहली मुलाकात भी प्री प्लान्ड ही थी। फिर दूसरी मुलाकात के बाद तो शादी हो गई, पर उसके बाद की मुलाकात जो ही उसने अरेंज मैरिज वाले भाव को ही बदल दिया और रिश्ता जान पहचान से बढ़कर पक्का हो गया और उस मुलाकात के दम पर हमारे प्यारे रिश्तों की नींव पड़ी है और ये मुलाकात हमेशा के लिए यादगार बन गई है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कि जब आप पहली बार मिली होंगी और उसके बाद जब आपका ब्याह उसी शख्स से हो गया तो अब जिंदगी तो बस क्या बन गई, बहुत शानदार है ना। आइए सुनते हैं फिल्म पालकी का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद साहब की धुन। कभी ख्वाबों में आपकी भी मुलाकात किसी से होती है, बताइएगा।

तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। आपकी भी कभी ऐसी कोई मुलाकात हुई हो ख्वाबों में, सपनों में और अचानक, है ना? तो बताइएगा कम शब्दों में। बहुत कम समय हमारे पास है और श्रोता बराबर जवाब दे रहे हैं हमारे सवालों का। एक श्रोता लिखते हैं कि फेसबुक विविध भारती से जुड़कर बहुत सारी ऐसी सहेलियां मिल गई, पता नहीं इनसे मुलाकात कब होगी, पर ऐसा लगता है कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। हम फोन पर हमेशा दिल खोल कर बात करते हैं, तब नहीं लगता कि मुलाकात कोई जरूरी है। क्या बात है, आप फेसबुक से जुड़ गई हैं और एक परिवार बना लिया है आप सभी लोगों ने, तो जाहिर है सभी सखियां आपस में बात करती हैं, है ना? क्या बात करती हैं आप लोग बताइए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी पिछले महीने यूनुस जी, अच्छा यूनुस खान जी इंदौर आए हुए थे और मैं पास में ही रहता हूं, पर यूनुस खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, बड़ा अफसोस हुआ। अरे कोई बात नहीं, वो जब दोबारा आएंगे तो पता करिएगा कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे और आपको कहाँ मिलना है। कोई बात नहीं, मुलाकात फिर हो जाएगी उनसे और आपका ये संदेश हम पहुंचा भी देंगे उन तक। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि धर्मेंद्र जी, और जो आपने पूछा था मोहब्बत जिंदगी है, ये

एक श्रोता ने देखी है और कहते हैं कि इसमें धर्मेंद्र और राजश्री थे। अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, वो मुझे देखने आए और बस बात गई बन गई और शादी हो गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि लड़की वालों ने मुझे देखने के लिए घर बुलवाया, लड़की के बड़े भाई ने कई प्रश्न किए, सभी के सही जवाब दिए। बाहर छोड़ने आए तब बड़े भाई ने कहा और कोई सेवा, तो मैंने जवाब दिया कि मेहरबानी बनाए रखें, तो बड़े भाई ने कह दिया कि अभी तो आगे सोच कर करेंगे। हम दोनों कंफ्यूज थे, शर्म भी आ रही थी, आगे चलकर एक मुलाकात रिश्ते में बदल गई है और जल्दी ही शादी भी हो गई है। क्या बात है, बधाई हो। एक श्रोता लिखते हैं कि यादगार मुलाकात तो हमारे शहर अजमेर में एक कार्यक्रम में महान संगीतकार आदरणीय आनंद जी आए हुए थे। क्या बात है, कल्याण जी, आनंद जी वाले आनंद जी। कार्यक्रम के बाद मैं उनसे मिला और मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, अरे आप सिंधी हैं? अरे भाई मैं भी सिंधी हूँ, कच्छ का रहने वाला हूँ। और वो मुझसे सिंधी में ही बात करने लगे, जैसे मुझे बरसों से जानते हो, ऐसे उनका मेरे लिए अपनत्व से बात करना मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बिल्कुल, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी मुलाकात आनंद जी से हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिमला में एक पंजाबी फैमिली से मुलाकात हुई 2016 में, वो अच्छा बीकानेर से थे, उनके कई साल तक बात होती रही लेकिन एक दिन पता चला कि वो शांत हो गई और वो मुलाकात यादगार बन गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती मुझे बहुत पसंद है और 10 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ से जुड़ने की, कॉल करने की, लेकिन फोन नहीं लगता। कोई बात नहीं, तो आप फोन करते रहिए, ऐसी क्या बात है। बहुत सारे लोग पता है बरसों बरसों से फोन लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे पतिदेव से जब पहली मुलाकात हुई तो वो बताते हैं, पर एक वादा करिए, हंसेंगी नहीं आप। अच्छा, नहीं हंसेंगे पर हमें आप लोगों के संदेश पढ़कर हंसी आ जाती है क्योंकि उसमें प्यार और अपनत्व और मिठास छुपी होती है, तो मैं हंसे बिना नहीं रह पाती। चलिए नहीं हंसूंगी, पढ़ तो दूं। आपने लिखा है कि कोई न आपके साथ सभी श्रोता भी हंसेंगे। अरे श्रोताओं मत हंसिएगा, है ना। वो लिखती है कि हम उनसे मिले जब हमने उन्हें वरमाला डाली क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें देखा ही नहीं था, इतने हम डरे हुए थे, नहीं बात की थी कभी, आज सोचते हैं तो हंसी आ जाती है। और बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी कैसा था पहले, हम तो ऐसा कभी नहीं करें। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए आप खुद ही हंस पड़ी है और आप हमें हंसने के लिए मना कर रही है। बिल्कुल वो समय ऐसा था जब शादी होती थी माता पिता की बातों से, माता पिता की सहमति से, और लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, लेकिन वो डर वो है वो होता था दोनों तरफ, लेकिन लड़कियों में खास तौर से ज्यादा होता था। लेकिन आपके बच्चों ने सही कहा कि आज समय बदल गया है, जिंदगी बदल गई है, मुलाकात करने के तरीके बदल गए हैं और बहुत जिंदगी का फलसफा भी बदल गया है। तो मुलाकात करते हुए हम यहां तक तो पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ये फिल्म है लेडीज टेलर। इसके बारे में भी बताइएगा आपने इस फिल्म को देखा था या इस फिल्म के गाने आपको पसंद है, कौन कौन से गीत है। फिलहाल सुनिए ये गीत।

0: जी हाँ, दो चाहने वालों की मुलाकात कैसी होती है हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अभी दिल खोलकर आपने लिखा नहीं है। चलिए फिर कभी किसी कार्यक्रम में दिल खोलिएगा और बताइएगा कि कभी किसी की मुलाकात क्या रंग लाई आपके जीवन में। चाहे वो मुलाकात सामने हुई हो, ख्वाबों में हुई हो, कहीं भी हुई हो, है ना। अब अगले किसी कार्यक्रम में आप दिल खोल कर अपनी बात रखेंगे। वैसे एक श्रोता लिखते हैं कि हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कई गाने जैसे आप ही गा रही हैं। अच्छा, मुलाकात तो हमारी अपने होने वाली धर्मपत्नी से हुई थी, वो बहुत शानदार थी, जो हमें हमेशा याद रखती है, रहती है, बहुत सुंदर रहनी भी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि हम एक बार बैंकॉक से पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे, नागपुर के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। उसी समय मुझे पुराने महाभारत के श्री कृष्ण यानी कि नीतीश भारद्वाज अपने सामने बैठे दिखे। मैंने अपने पति के कान में धीरे से कहा और बाद में हम दोनों ने उनसे मिलकर फोटो खिंचवाई। बहुत सुंदर वो पल आपको बहुत याद होगा, है ना। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती से तो मुलाकात सबसे जब से होश संभाला है तब से हो गई थी, आज भी हो रही है, बिल्कुल होती रहनी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर सपनों में मुलाकात की बात आप करते हैं तो हमें सपने तो बहुत आते हैं, कई दिन तक कई नए नए चेहरे से मुलाकात तो होती है, लेकिन सुबह उठकर फिर भूल जाते हैं, उतना याद नहीं रहता, लेकिन नए नए चेहरे सपने में अगर आते ही रहते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि युवाओं को बहुत मीठे मीठे सपने आते हैं, तो ये बात सच है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबादत पर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, वैसे तो प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को हम विविध भारती के पेज पर देखते हैं, लेकिन एक तमन्ना है कि आप सभी से रूबरू मिलने की उम्मीद है और मेरी ये तमन्ना जरूर पूरी होगी। क्या बात है। तो चलिए हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक अब आ गए हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम चरस, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत पेरियार।
1: गुड नाइट।
0: हाँ, गुड नाइट। हमें गुड नाइट नहीं कहना है अभी तो, हम रात को कहेंगे, अभी तो गुड

तो दोस्तों इस कार्यक्रम से अब हम भी जुदा होते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए कार्यक्रम में और किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और 19 स्लिप वेव 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिपबिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वो भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूँ।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उड़ीसा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रूपये से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान चावडी तथा पश्चिम बंगाल की विजयनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों धारापुरम और मधुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मधुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और धारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में सौधों पीपर 120

0: 84 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दो गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
0: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
2: स्टेचिबिलिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगार मिली उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
0: अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और पर भी उपलब्ध है।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@aarnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुनिए दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है जिसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षत के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
6: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च की इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। ये संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
7: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
3: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
7: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट CJI द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। CJI ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
3: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष ग्रहण पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
8: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदेदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
3: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत के डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: बोल रही हैं
0: ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

توسط کاریگرام صدا بهر نغمه. इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: यह अवस्थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था चौधरी का चंद। गीतकार थे शकील बदायूं ने और संगीत दिया था रवि ने। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो किसी धांधली गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिनड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: ओपन एयर के संगीत निर्देशन में अभी आपने अनजान का लिखा ये दो गाना सुना, स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था जाली नोट। पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। देखिए बात और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर लिया ना ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में। तो
0: 6 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काला बाजार का गीत, शब्दकार शैलेंद्र और संगीत ओ एस डी बर्मन का।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी,
1: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी थी।
0: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे का अगला गीत श्री रामचंद्र का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल। फिल्म का नाम है सरहद और आवाजी आशा भोसले और श्री रामचंद्र यानी चितलकर की।

0: सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सिंह।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे, आवाज गीता दत्त की। इस गीत को शकील नुमानी ने लिखा है और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिरो दिन राम।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सिंह।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। पंडित भरत व्यास के बोल, एस एन त्रिपाठी की धुन, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजें। फिल्म का नाम है लाल किला।

चांद की नोकी रात चांदनी साथ काम।

0: वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खुद देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। देखने बाद और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर लिया ना ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

0: इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखी और उन्नत स्लीपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियात क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वो भारत की मैरिटाइम फ्यूचर कि एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम के नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। आज लोकतंत्र की आड़ में आकाशवाणी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निराधार, असंगत और झूठे बयानों से पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। इससे पहले श्री राहुल गांधी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
2: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए।
0: राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श जारी किए जा चुके हैं। ई संजीवनी के अंतर्गत इस समय 1,42,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 19,000 से अधिक मेडिकल हब और 901 ऑनलाइन OPD काम कर रहे हैं। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: nie szkoła kołok na słucha. Sumie dwa tam nie tam bardziej mieć kong aha, a ja station nie problem kołok ma tam nie sumie, bo ja nie mam aha. Pali nie sumie tam nie problem kołok, tam nie bo bardziej mieć sut mocie to nie kna sut hegen. Ta to sami tam nie sumie dia linie nie tam tam problem kołok. A czas sa points nie mite weno, FM channel nie go kna sut na mat gen. Kna sut mocie sa kan dengan salam yan Akashwani Tura.
1: दूसरों की मदद करने के काबिल भी बन सके और इस कंपनी की नींव गांव की महिलाओं में जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें होती है ना बस वहीं से पड़ गई बिल्कुल इससे ये भी हमें पता चलता है ना कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो या हम बहुत सारी पूंजी इकट्ठा करने के बाद कोई काम शुरू करें अगर हमारे पास हमें लगता है कि हमारे पास कोई हुनर है तो हम छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं तो जब देखा गया कि किसान बीज खाद और पशुपालन से जुड़ी हर छोटी जरूरत के लिए बाजार और बिचौलियों पर निर्भर है तब लगा कि अगर महिलाएं मिलकर अपनी कंपनी बनाएं और खुद फैसले लें तो वो सिर्फ अपनी आय ही नहीं बढ़ा पाएंगी बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकेंगी। तो आरती देवी की यात्रा हमें बस यही तो बताती है कि गांव की जो महिलाएं हैं उसके पास संसाधन बहुत सीमित हो सकते हैं लेकिन जो उनकी सामूहिक सोच है इनकी सब मिलकर जब वो किसी बात पर विचार करती है सोच करती है उसे अंजाम देती है या प्रशिक्षण उनके पास जो है जो बाजार की जो समझ है और नेतृत्व का अवसर अगर उनको मिल जाए तो ये जो महिलाएं हैं ये किसी भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली एक उद्यमी महिला भी बन सकती हैं।
2: बिल्कुल और इस कंपनी की कहानी में असली माटी जो है अगर कहा जाए दिया माटी माटी क्या है तो माटी जो है वो गांव की है और उसकी असली दिया है वो महिलाएं जो मिलकर अपने भविष्य को रोशन करने की कोशिश कर रही है। 28 जुलाई 2023 को दिया माटी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई और शुरुआत 10 ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता जो समूह होते हैं उनसे हुई थी
1: और हर पंचायत से 3 महिलाओं को इसके लिए प्रमोटर बनाया गया और इस तरह से करीब 30 महिलाओं ने इस कंपनी की नींव रखी और कहें

0: पता कुछ समझा नहीं था, वहां उनको इतना सशक्त बना देना, इतना ऊपर तक ले आना बहुत बड़ी बात है। और उन्हें वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, रिकॉर्ड प्रबंधन और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे कि वो अपने काम को आसानी से कर सके। और सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं का भरोसा जीतना था। कंपनी और शेयर जैसे विषय उनके लिए बिल्कुल नए थे, तो उनको समझाया गया कि उनकी अपनी कंपनी है।
1: और आरती, जब उन्होंने देखा कि हर फैसला बहुत पारदर्शी तरीके से लिया जा रहा है, यानी कि उनसे छुपाकर कोई भी चीज नहीं की जा रही है, और उनकी राय को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और कंपनी की तरफ जो उनका जुड़ाव था वो भी बहुत मजबूत हुआ। और उनकी कंपनी का उद्देश्य केवल खेती करना नहीं था, बल्कि किसानों की सामूहिक बाजार शक्ति है उसको बढ़ाना था।
0: बिल्कुल। और कंपनी के माध्यम से महिलाओं को बीज, खाद और खेती से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और उनकी उपज को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और साथ ही बकरी पालन भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यानी कि आप समझ लीजिए, जो भी कुछ गाँव में होता है सभी चीजों को बाजार का एक प्रोडक्ट की तरह से उन्होंने किया। और स्थानीय महिलाओं के लिए बकरी पालन आय का प्रमुख साधन था, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो पूर्ण होता है पशु आहार होता है और बाजार तक पहुंच, ये कुछ समस्याएं थी।
1: बिल्कुल। अगर आप किसी भी तरह का कोई पशु पालन कर रहे हैं तो अपने पशु को भी स्वस्थ रखने के लिए जो उसका आहार है उस पर खास ध्यान देना होता है। और इसी संदर्भ में उनकी कंपनी ने दमदार दाना इस नाम से एक पशु आहार विकसित किया। इसके बाद संगीता देवी के मन में विचार आया कि भाई जब कपड़े और दूसरी आवश्यक जरूरतें ऑनलाइन खरीदी जा सकती है, तो क्यों ना ये जो पशु आहार है, बकरी का आहार है, इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है। और इसी सोच के साथ जो उन्होंने जो दमदार दाना जो लॉन्च किया था उसको सही दिशा में पहुंचाने का काम शुरू हो गया।
0: बिल्कुल। क्योंकि ना देखिए, हर चीज आज जो एक क्लिक के ऊपर में मिलती है, तो इस तरह से अगर हम कोई भी चीज करना चाहें तो हम अपने घर से भी इसमें ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण महिला उद्यमिता और डिजिटल बाजार के बीच एक दिलचस्प उदाहरण है। इस मॉडल का एक बड़ा बदलाव ये है कि महिलाएं बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और व्यवसाय संबंधी निर्णयों में अधिक सक्रिय हुई। कुछ महिलाएं ग्राम सभा जैसे स्थानीय मंचों पर भी अपनी बात रखने लगी।
1: और कंपनी भविष्य में पशु सप्लीमेंट्स, हरा चारा, जैविक उर्वरक, कृषि इनपुट, खाद्य प्रसंस्करण, इन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करना चाहती है। और दमदार दाना को बिहार के अन्य जिलों तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। तो इस तरह से हमें कहीं भी रुकना नहीं होता है। हम ये कभी ना सोचे कि हम में ये कमी है या हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए,
0: अभी समय हो गया एक छोटे से
1: अंतराल का।
0: हाँ।

0: गाना सुना और इस गाने को सुनने के बाद में मुझे भी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत खनक थी इस गीत में और मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा। बात करती हूँ मुहावरे की जो है ओखली में सिर देना। नहीं, बहुत बार क्या होता है ना, इंसान मुसीबत में फंसता नहीं बल्कि मुसीबत को देखता है, खुद ही कहता है कि आइए आपका स्वागत।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे मौकों के लिए हिंदी में बड़ी मजेदार कहावतें मुहावरे हैं, जैसे एक तरह भी आदल मुझे मारो, ठीक है ओखली में सिर देना, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। यानी कि किसी भी परेशानी में जान बूझ कर पड़ना और फिर उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। और जब ओखली में सिर देंगे तो मुसल तो पड़ेंगे ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए, पड़ोसी ने कहा भाई साहब मेरी शादी की तैयारी, मैं बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए। आपने कह दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो करूंगा। तो और 5 मिनट बाद आप फूल सजा रहे हैं कहीं पर, आप कुर्सियां लगा रहे हैं और आधे घंटे बाद आप मेहमानों को पानी पिला रहे हैं और शाम होते होते दूल्हे की सेहराबंदी भी आपके जिम्मे। तभी अंदर सवाल आती है, अरे भैया जरा उससे डीजे वाले से कह दो कि दूसरा गाना लगा दे। एक से लेके पूरा 10 तक सारे काम आपके जिम्मे।
0: बिल्कुल। यानी आपने कहा था कि भाई कोई ठीक है मदद चाहिए तो हमें भी बताना, बाद में आपको लगेगा कि भाई क्यों सो खिली में सो दो दिया। और जब धनाधन मुसल पड़ते हैं तभी बात ध्यान में थी क्यों हमने इसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में?
1: श्रोता भी हमारे बहुत कुछ कह रहे हैं और हमारे एक श्रोता जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना मतलब आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत को न्योता देना जो खुद के साथ साथ घर परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ओखली परिवार और समाज में खलबली मचा सकती है। सच बात है,
0: सही बात है। और एक अन्य संदेश में श्रोता ने कहा है कि लोकप्रिय हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम मोल लेना। और ओखली में सिर देना तो मुसलों से क्या डरना, इसका अर्थ है कि जब एक बार कठिन काम करने का निश्चय कर ही लिया है तो आने वाली जो भी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनसे डरना नहीं है। तो

0: तुम्हें मन का बावरा पंछी बोल रहा है और हमारे जो संदेश है वो भी आ रहे हैं। और ओखली क्या है इसके बारे में हमारे श्रोता ने बताया कि ओखली वो भारी बर्तन है जिसमें अनाज को डालकर मूसल से कूटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसमें अपना सर रख दे तो चोट लगना तो तय है। इसीलिए कहावत का सीधा सीधा संदेश यही है कि कठिन परिस्थितियां जोखिम को चुना है तो मुश्किलों से डरना नहीं है और घबराना तो व्यर्थ है।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो श्रोता है वो भी कुछ कहना चाहते हैं, लिखते हैं कि हिंदी मुहावरा यानी कि ओखली में से देना का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम को मोल लेना। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जानते हुए भी कि आगे चलकर भारी परेशानी नुकसान या संकट आने वाला है स्वयं अपनी मर्जी से किसी कठिन काम को हाथ में लेता है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।
0: और भी संदेश है इसके लिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ओखली में सो देना ये वाक्य जीवन के साहस और दृढ़ता को भी दिखाता है। यदि अपनी स्वेच्छा से कोई चुनौतीपूर्ण रास्ता चुन लिया जाए, जैसे कोई भी कठिन परीक्षा है, नया व्यवसाय है, तो अब उसके संघर्ष से डरने का कोई फायदा नहीं बल्कि डट कर उनका सामना करना है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना तो मूसल से क्या डरना बड़ा रोचक है। अगर गाना चला दें तो विविध भारती को ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या मतलब डर। इनका कहना है कि नए गाने आए चाहे पुराने गाने आपको सुनना है।
0: एक हमारे श्रोता जो है अपना संदेश साझा किया है, ये बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर का काम घर की जो महिलाएं हैं चाहे वो पत्नियां हैं बहनें उनको करना पड़ता है। हमारे पापा का पोस्टमार्टम तो भीलवाड़ा में करवाया गया और इन्होंने अपनी कुछ घटना लिखी है कि पुलिस वालों के साथ में कुछ इस तरह की बातचीत इनकी हुई तो फिर मुनीम के जरिए वो काम करवाया गया। तो इस तरह की कुछ बातें इन्होंने लिखी है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इस तरह के कार्य जिसका परिणाम स्पष्ट नहीं होता यानी कि मुश्किलों से भरा हुआ होता है। आज मैं दांतों के डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर कुछ ने जब चेक किया तो उसने कहा कि कुछ जो दांत है वो खराब हो गए तो इन्हें नया लगवा लीजिए उसको निकलवा के। तो मैंने कहा लगा दीजिए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया पर मैंने यही सोच लिया कि अब ओखली में से दिया है तो डरना कैसा, यानी कि दांत निकलेगा तो दर्द तो होना ही होना है, उसको तो आपको सहना ही पड़ेगा।
0: यानी कि सिर्फ दिखाने गए थे और आपका ट्रीटमेंट चालू हो गया। चलिए हम भी गाना सुन लेते हैं।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं
1: के साथ संदेशों के साथ में और ओखली हमारी चल रही है। तो हमारे अभी जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब कभी सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी से नोकझोंक होती है तो धर्मपत्नी बहुत ही फेमस डायलॉग बोलती है, मैं तो फंस गई आपसे शादी करके। जब मैं जवाब देता हूँ कि अब ओखली में से दे ही दिया है तो मौसम से पछतावा कैसा, फिर हम दोनों हंस देते हैं, अगर उसमें बच्चे बैठे हो तो वो भी हंसते हैं।
0: और इसी तरह से भाई जब त्योहारों का मौसम आता है, त्योहारों का जब बहुत सारे त्योहार लगातार आते जाते हैं तो ये भी ऐसा ही समय है। और जब तैयारियां करनी है तो भाई फिर से डरना की ना, और इन तैयारियों को बहुत मजे के साथ और उत्साह के साथ आपको करना है। और त्योहार का नाम सुनते हुए सबसे पहले मन में क्या आता है भाई आरती? मिठाई
1: मिठाई
0: रिश्तेदार सबसे पहले शुरू होता है भाई, चलो सफाई शुरू करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सफाई जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाना है कहीं कुछ सामान लेने में।
0: और पता घर में एक ही आवाज गूंजती है कि इस बार त्योहार हमें पूरा घर चमकाना है, और भाई जो बाकी के सदस्य है ना वो सोचते हैं क्या हुआ, हमारा क्या कसूर था, हम भी फंस गए इसमें। लेकिन भाई सबको मिलजुल कर काम करना है, अगर उत्सव का आनंद एक साथ लेना है तो तैयारी भी सबको मिलकर ही करनी है।
1: बिल्कुल,
0: और कई बार तो होता है कि साल भर जो सामान अलमारियों में पड़े रहते हैं उनकी ही याद आती है, उनकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि भाई कौन सा डिब्बा है, चलो भाई काम की चीजें तो उसे निकाल।

0: काम करते रख ले, कहीं से जब हम फेंकने लगते हैं तो पीछे से किसी की आवाज भेजने लग दो, काम किसी का है।
1: बिल्कुल, वो सामान जो है वो अगले 10 साल तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वो चाहे डिब्बा हो चाहे कोई कोई भी सामान क्यों ना हो, होता हो चाहे बेकारी हो, लेकिन तब भी उसको इतना रहता है ना कि हम लोग की जो भारतीय फैमिली होती है उनकी खासियत यही है कि भाई कोई भी चीज हम उसको खराब नहीं करते। अगर कोई डिब्बा है तो उसको खाली, चलो उसको धोके रख देते हैं, उसमें कोई मसाला भर देंगे, चाहे चॉकलेट का डिब्बा हो पर कोई खोले उसको चॉकलेट समझ के तो उसमें से दाल निकलेगी।
0: साथ में हमारा जुड़ाव ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये हमें उस बात को ऐसा जब हुआ था तो हमें वो तोहफे के तौर पर मिला था, वो तोहफा चाहे आज हमारे घर में काम नहीं आ रहा है या अभी वो पड़े पड़े धूल मिट्टी से या जंग लग के खराब हो गए, लेकिन उस चीज से जो जुड़ाव है उसकी वजह से भी हम
1: उस चीज से या उसकी यादों से जो हमारा जुड़ाव रहता है ना वो बना रहता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब हम कोई सफाई करते करते हमें कोई पुराना फोटो मिल जाए, बस ये क्या हो गया काम, तो सफाई बंद, यादें शुरू। अरे ये फोटो देखो, अरे वाह तब मैं कितना पतला था, कितनी पतली थी, और 2 घंटे बाद पता चलता है कि घर की सफाई जहाँ से शुरू हुई थी वहीं की वहीं है। अब बात करें त्योहारों पर जो खरीदारी होती है उसकी, तो त्योहार से पहले बाजार में ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने एक साथ घोषणा कर दी हो कि जो चाहिए वो अभी ले लो, नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा।
0: इतने सारे ऑफर भी उन पर डाल दिए जाते हैं और घर से जब निकलते ना खरीदारी के लिए एक बजट तय करके निकलते हैं कि भाई ये चीज लेनी है, फला फला चीज लेनी है, लेकिन जब बाजार पहुंचते हैं तो बस वो तो कहते हैं कि लुभाव ने अवसर तो होते हैं, जो ऑफर होते हैं उनको देखकर भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चलो कपड़े लेने हैं, जूते भी लेने, सजावट की चीजें भी ले लो, तो कुछ मिठाई भी ले लो, भाई जो मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट भी ले लो। और आखिर में दुकानदार पूछता है भाई कुछ और लेने का भी मन है, तो खबर क्या करते हैं
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी अच्छी चीज सभी जो दुकानें होती हैं जो सामान होता है सजावट बड़ा वहां पे रहता है ना, वो लाइटें चमक रही होती है तो मन ही नहीं करता वहां से आते, अच्छा ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, चाहे वो काम आए चाहे वो एक तरफ पड़ा रहे घर में लेकिन उसे उठा लाते हैं।
0: हम खरीदने गए थे एक सजावट के लिए, कोई एक कहते कि लाइट लगानी है हमें, तो एक लेनी होती है साथ में

0: देते ना कि अच्छा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो वो करते करते बजट तो एकदम एक साइड हो जाता है और बहुत ही ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो सजावट का साथ ऐसा होता है कि घर में एक सदस्य कहता है कि इस बार कुछ यूनिक करते हैं, फिर उसके डिजाइन देखे जाते हैं, बस इंटरनेट पर देखते हैं, सर्च करते कि नए नए डिजाइन कैसे हैं, और जो हमने वहाँ सजावट देखी बिल्कुल उसे कहीं कम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगता है। और कहीं कोई लाइटें लगाने में व्यस्त है, कहीं कोई फूल चिपका रहा है, कोई किसी अपने से क्या दिखाने के लिए काम कर रहा है, कुशन को उठाया यहाँ से वहां रख दिया, ये उठाई चीज वहां से बाहर रख दी, जो काम जिसे ना करना वो काम के बहाने भी सिरा से
1: छोटी छोटी चीजें रखे, अच्छा ये चीज वहां बाहर रख दी, कोई काम कर रहे दिख रहा है कि हम काम कर रहे हैं, बस इधर जा रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा कि ना वो एक माहौल एक अलग सा बना होता है जो रोज नहीं होता ऐसा।
0: तो चलिए माहौल तो बनेगा, हमारे संदेश बहुत सारे आ रहे हैं, पहले गाना सुन लो बिल्कुल।

0: सच में जो बहारों की जो ऋत आ रही है यानी कि त्योहारों की ऋत आ रही है, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि लाइट्स, दिए, रंगोली, फूलों से जब घर सजता है तो सारी थकान गायब हो जाती है और ये काम पूरे परिवार को एक साथ लेकर आता है जहाँ सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी।
1: बिल्कुल। और एक ख्वाहिश होता है जो लिखते हैं कि त्योहार आ रहे हैं और घर में साफ सफाई ना हो ये असंभव है, और परिदेव के पॉकेट की भी सफाई ना हो ये भी असंभव है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की खरीदी वैरायटी से भी बड़ी बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है, इसके सामने परिदेव के चेहरे का कलर भी डिम पड़ जाता है।
0: और अब सबसे पहले जो त्योहार आने वाला है वो है नवरात्रि उत्सव, और इसमें जब गरबा करने के लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब एक साथ में निकलते हैं तो जो साज सज्जा होती है उसमें कपड़ों के, गहनों की जो खरीदारी है वो देखने लायक है। बाजारों में बहुत धूम मची हुई है,
1: इसमें बहुत ही रौनक रहती है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा होता है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें, बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर वही विंडो शॉपिंग और तोल मोल करना, ये सब अपना ही एक अलग मजा होता है इन चीजों का।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि ये दीपावली का पर्व जब भी आता है तो हमें साफ सफाई करने में काफी दिक्कत आती है, सफाई भी बहुत काफी और पूरे घर की करनी होती है, एक तरह से काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, पर मैं 2 महीने पहले से ही सफाई करना शुरू कर देता हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी जब भी समय मिलता है सफाई करते रहता हूँ, फिर भी सफाई पूरी नहीं हो पाती।
0: और एक अन्य संदेश में कहा गया है कि त्योहार आने से हफ्तों पहले घर का कोना कोना चमकने लगता है, ऐसा लगता है कि घर की सफाई नहीं हुई तो त्योहार आएगा ही नहीं। पुराना कबाड़ निकालना, अलमारियों को ठीक करना, ये शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, लेकिन घर को साफ सुथरा देखकर मानसिक सुकून मिलता है जो लाजवाब है। सच तो ये है कि बिना सफाई, सजावट और खरीदारी के कोई भी त्योहार फीका लगता है, और बिना अपनों के साथ हल्की फुल्की बातचीत के ये सब तामझाम भी बेकार है। इसीलिए असली मजा इन दोनों का संतुलन बनाने में है। तो ये बात बड़ी सही कही है, जहाँ एक तरफ ये सब काम है, खरीदारी है और बजट भी है, लेकिन अपनों के साथ बैठना ये एक अलग सुकून देने वाले पल होते हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि त्योहार बनाओ खरीदारी यानी कि सजावट और सफाई बहुत बेमिसाल मुद्दा है। त्योहार पर हमारी माँ पहले कई साड़ियाँ, खाने का सामान और पटाखे खरीद कर लाती थी, लेकिन अब माँ कुछ नहीं लाती है, अब घर पर पापड़ और गुंछा बना देती है। पापा भी पटाखे खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं देता, देते थे लेकिन अब कोई नहीं देता है। बहन सुबह झाड़ू से सारे कमरों की सफाई करती है और जाले भी साफ करती है, फिर माँ सब्जी बना देती है और उसके बाद बहन रोटियां बेल लेती है। सफाई तो नजाकत से बयान करती ही है। मतलब चीजें हैं कि देखिए साफ सफाई घर में होनी चाहिए, बहुत सारी जो ताकि जो कहते हैं ना कि जो इतना समय का गंद रखा हुआ है, जो कूड़ा करकट है वो हट जाता है, कचरा हट जाता है, तो साफ सफाई हो जाता है।
0: इसका पूरा सीधे कहते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका भी है, क्योंकि सीलन की बदबू हो चुकी होती है घरों में और सीलन से कई बार खराब हो चुकी होती है बारिश के बाद में, फिर जब ये त्योहार आता है तो घर में कई बार जो कीड़े मकौड़े पनप जाते हैं, जाले लग जाते हैं मकड़े को, उसकी साफ सफाई हो जाती है और पूरा घर कई बार जब हम लिपाई भी करवाते हैं तो जो कुओं में कीड़े मकोड़े छुपे हुए रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और पुरानी चीजें जो घर में कई बार इस्तेमाल ना होते हुए किसी कोने में पड़ी हुई थी उनको भी निकाल कर घर में जगह बना दी जाती है। और आरती त्योहारों का असली मजा तो यही है कि परिवार के साथ बैठें, पुराने गिले शिकवे भी भूलें, पड़ोसी के घर भी कई बार हम मिठाइयां पहुंचाते हैं उनसे ताकि संबंध अच्छे बने रहें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सबके साथ मिलकर ही खुशियां बांटना ये बात ही अलग होती है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी, सजावट, सफाई, दीपावली की सफाई शुरू हो चुकी है, मेरे रूम के सभी कपबोर्ड, जितने भी कबर्ड है, अलमारी है, सभी कंपार्टमेंट की सफाई मैंने खुद की है, क्योंकि अगर कोई दूसरा करे तो चीजें मुझे मिलती नहीं है और श्रीमती जी को इससे बाहर रखना पड़ता है, और इस बात पर नोकझोंक होती है। मेरी चीजों में मेरी जो चीजें वो मैं ही रखता हूँ, तब मुझे आसानी रहती है। इन दिनों घर का माहौल गर्मा गर्मी का रहता है, मतलब त्योहार ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है ना कि जब त्योहारों में सफाई होती है ना तो मेरा सामान कहाँ चले गया है मिल नहीं रहा है। जब सफाई के बाद ये जो नोकझोंक होती है बहुत खतरनाक होती है कि कभी किसी का सामान नहीं मिल रहा, कभी किसी का किसने कहा रख दिया। तो एक अच्छी बात भी है कि हम अपने अपने कमरे की सफाई, अपने सामान की सफाई खुद ही करें ताकि हमें अपने जो हमें मालूम होगा कि हमने कहाँ रखा है वो सामान।
0: हम बात कर रहे हैं कि अपने घर की, अपनी चीजों की सफाई कैसे रखनी है, इसके साथ छोटा सा एक काम हम ये भी कर लें कि मन को भी साफ करें। हम कई बार अपने मन में लोगों के प्रति जो भावनाएं रखते हैं उनको भी साफ कर सकते हैं, और घर को साफ करने के लिए भी नई चीजें खरीदी, लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं जो कई बार तकरार हो जाती है और मन में हम मुटाव लेकर बैठ जाते हैं, बुरी भावनाएं लेकर बैठ जाती है, उनकी भी सफाई करिए और बिल्कुल सारे गिले शिकवे बुलाकर तो हर हमें उनसे भी गले मिलिए।
1: बिल्कुल, एक मैं जो साथी हूँ इसी बात को कहते हैं, आपने कहा है कि सफाई, सजावट और खरीदारी त्योहारों की केवल बाहरी तैयारियां हैं, इनका असली उद्देश्य हमारे भीतर खुशी, संतोष और प्रेम का संचार करना है। जब घर का हर कोना साफ और जगमगाता है तब मन में भी खुशियां, जो खुशियां उसकी एक नई रोशनी जल उठती है।
0: बिल्कुल, घर भी सजाइए लेकिन रिश्तों में भी थोड़ी सी रोशनी लगाइए, क्योंकि त्योहार की असली रौनक बाजारों में नहीं या सजावट की दुकान में नहीं मिलती, वो तो अपनों के साथ मिलकर बैठती है, तो उनके साथ मिल बैठकर हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिए हम भी एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो हमारा प्रोग्राम भी अब आगे चल रहा है और हम बता दें कि आज बहुत एक खास दिन है जो है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस और आज हम इस दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि इस चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है, कुछ भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील विषय है और समाज को प्रेरित भी करती है ऐसी बातें, क्योंकि जो इस तरह के मरीज होते हैं, इस तरह के रोग से पीड़ित होते हैं, उनको खास तौर पर हमारे प्रेम की बहुत जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, वैसे भी जो सेरेब्रल पॉलिसी है ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों, संतुलन और मुद्रा को प्रभावित कर सकती है। ये मस्तिष्क के विकास से जुड़ी क्षति असामान्य विकास के कारण होते हैं
0: और ये अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी है जिसमें मांसपेशियों का तनाव और अकड़न बढ़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक और इसका प्रकार है जिसमें हाथ पैरों और हथेलियों के कुछ मामलों और चेहरों और जीभ को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है जो मरीज है उनके लिए।
1: बिल्कुल, और साथ ही एक तरीके की ऐसी भी होती है जिसमें कि मुख्य रूप से संतुलन और समन्वय को प्रभावित करती है, जिससे चलने में अस्थिरता आ सकती है और सटीक जो नियंत्रण होती है उसके आवश्यकता वाले कामों में कठिनाई हो सकती है।
0: बिल्कुल, किसी को चलने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है, तो किसी को बोलने या फिर रोजमर्रा के जो काम है उनमें किसी भी तरह का सहयोग लेना पड़ता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती है और किसी को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, किसी को थोड़ी कम होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे समाज में अक्सर किसी व्यक्ति की शारीरिक कठिनाई को देखकर हम उसके लिए अपनी सीमाएं तय कर देते हैं। यही से सोच बदलने की जरूरत है। कोई किसी से ये ना कहे कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि ये कहे कि आपको ये काम करने के लिए किस तरह की मदद चाहिए।
0: और बस यही अंतर होता है सहानुभूति में और सम्मानजनक सहयोग में। तो हम सहानुभूति ना दिखाए, उन्हें सम्मान दें, उनकी भावनाओं को भी समझें और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है।
1: बिल्कुल, और इस वर्ष के लिए इस दिवस का मुख्य विषय भी चुना गया है जो कि है यूनिक एंड यूनाइटेड, यानी कि अद्वितीय और एकजुट है, जो व्यक्तिगत आवाजों और सामूहिकता की ताकत पर जोर देता है।
0: तो चलिए अब सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो हम ले रहे थे अपने किस तरह से श्रोता बता रहे हैं कि किस तरह से वो सफाई करते हैं, सजावट करते हैं द्वार की,
1: संदेश आने बंद ही नहीं हो रहे हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इन सब तामझाम के बीच में सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब काम खत्म करके पूरा परिवार पूरा जो परिवार है वो साथ में बैठता है और चाय की चुस्कियों के साथ पुरानी यादें ताजा करी जाती है, रिश्तेदारों की खिंचाई की जाती है और हंसना हंसाना ही त्योहार को सच में त्योहार बनाता है।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि गणपति पर हमारे यहाँ बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे किसी ने भेजे थे और इन चॉकलेट के डब्बों में हमने मक्खन रख लिया, तो आपने सही कहा कि काम करते करते कई बार एक एल्बम भी मिल गई तो सफाई भरी की भरी रह जाती है, यानी कि हमारी जो बातें हैं उनसे हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इत्तेफाक रखते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे जो श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े बर्तन मिठाइयां और गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा है, लेकिन भारी भीड़ लंबी लाइनें और बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है, फिर भी बिंदु शॉपिंग और तोल मोल करने का अपना ही अलग मजा है।
1: तो चलिए अब एक गाने सुनने का

0: तो भाई इस गीत के साथ में घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हमें
1: इनारा कहने का विलंब हो गया है। इनारा कह रहे
0: कल फिर आएंगे सखी सहेली लेकर, ये वादा करती हूँ।
1: लेकिन
0: और इसी के साथ हमें अनुमति दे दीजिए, यानी कि आतिश और सबको चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से बचपन से जिसको सुनते आ रहा हूँ, आज वहाँ पर बैठा हूँ। मेरे सामने जुबेर भाई है जिनको मैं अक्सर पुरानी हेट के बारे में सुनता था, आज मैं उनको देख भी रहा हूँ। आप हैं, आपकी आवाज़ सुनता था, मेरे सारे ही, मतलब मैं थोड़ा सा खोया खोया हूँ।

बच्चों से बचपन से जिसको सुनते आ रहा हूँ, आज वहाँ पर बैठा हूँ। मेरे सामने जुबेर भाई है, जिनको मैं अक्सर पुरानी हेट के बारे में सुनता था, आज मैं उनको देख भी रहा हूँ। आप हैं, आपकी आवाज़ सुनता था, मेरे सारे ही मतलब मैं थोड़ा सा खोया खोया हूँ।

0: फनकार हुए, चाहे आज के मेहमान हुए, ये सारे गेस्ट आते थे पिटारा में। तो वो सब सुन सुन के, या फिर मुझे जो फ्राइडे को एक फिल्म के ऊपर आती थी बातें, लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे,
1: जी जी
0: तो वो सब सुन सुन के मैं अपने आप को तैयार किया। और पूरी जिंदगी अब तक सिर्फ और सिर्फ मुंबई के बारे में, एक अभिनेता के बारे में सोचता रहा।
1: आपका रिसर्च वर्क वहां से शुरू हो गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से विविध भारती मेरी जिंदगी में आया। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ, मैं कई बार लोगों से शेयर किया हूँ
1: जी
0: कि आज जो मेरा व्यक्तित्व है, या फिर मैं जो चंदन हूँ, अगर 50% मेरे माँ बाप, मेरे आस पास का संस्कार अगर मेरे अंदर है, तो 50% विविध भारती का भी है। विविध भारती ने मुझे बोलना सिखाया, विविध भारती ने कैसे मुंबई जाया जाए, अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए, और कैसे अपने सपनों के लिए लड़ा जाए, जूझा जाए,
1: जी
0: है ना। और हमेशा पॉजिटिव रहना, क्योंकि एक बालक मन में, जिसको कुछ भी वो दुनिया देखा ही नहीं है, सिर्फ उसी छोटे से रेडियो सेट से वो पूरी दुनिया को देख रहा है। तो ये पूरा श्रेय मैं विविध भारती और रेडियो को देना
1: क्या
0: चाहता
1: बात
0: हूँ,
1: है,
0: है
1: ये
0: ना।
1: हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि विविध भारती से लोग जुड़ते हैं और इतना ज्यादा उन पर असर, उनकी जिंदगी पर असर करती है विविध भारती। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके
0: या
1: लिए।
0: शुक्रिया।
1: बचपन की जैसे बात की आपने, तो गांव कैसा था, परिवार कैसा था, क्या उनको सही था कि आप अभिनय में आए, क्या
0: हाँ जी, हाँ
1: वो इस
0: जी,
1: चीज से खुश थे, या फिर जैसे कहते हैं ना गांव में आप रहे हैं उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं। दूसरी चीज, बचपन को जिया है शायद आपने, जैसे सही मानों में कहते हैं जिया है, तो उसकी कुछ यादें बताइए, कैसे थे आप बचपन में।
0: बिल्कुल। अरे वाह। एक तो जहां पे, मतलब क्योंकि मैं रेडियो बहुत सुनता था, रात्रि सुबह भी सुनता था, अगर मेरी आंखें खुल गई हो 2:30-3 बजे, तो मैं चुपके से रेडियो ऑन करके और उसी पे कान रख के सो जाता था, और गाने चल रहे होते थे। मुझे रेडियो से इस कदर मोहब्बत थी, तो जहां मेरे रेडियो सुनने से मेरे घर वाले को आपत्ति हुआ करता था, वहां अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सिनेमा में जाना है, मुंबई जाना है, तो ये बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं सुहाएगा। करेक्ट। तो मुझे याद है कि जब मैंने +2 किया था, तो पिताजी से मेरा बहुत अच्छा, मतलब मैं नहीं उनसे कंफर्टेबल रहता था, एक डर रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे। नहीं,
1: अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे।
0: कभी भी, उन्होंने मुझे आज तक एक चाटा भी नहीं मारा,
1: अच्छा।
0: है ना। बट उनका ये था कि मुझे डर लगता था वो वर्दी से। अब हो सके फिल्मों का ही देन हो, चूंकि मैंने फिल्मों में पुलिस वाले पैसे ही देखा है। तो बट मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी, बहुत प्यारे, बट मैंने कभी हमारी उस तरह से यारी दोस्ती नहीं हुई पापा के साथ। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चंदन बोल रहा है कि जाएगा बम्बई, हीरो बनेगा।
1: अच्छा।
0: तो मेरे पिताजी ने कहा अच्छा फिल्म में भर्ती होगा। तो बहुत अजीब सा था घर का माहौल, और पहली बार लगा कि अरे यार ये लोग को पसंद नहीं है, शायद मुंबई ना जा पाऊं मैं। बट फिर आप लोगों ने हौसला दिया, मतलब विविध भारती ने हौसला दिया कि देख सपना है अगर, तो तुम्हें ही पूरा करना होगा,
1: और
0: कोई
1: सपनों की
0: और,
1: नगरी में आना ही है।
0: बिल्कुल, और कोई और नहीं तुम्हारे सपनों के लिए कुछ, कोई क्यों ही करे,
1: जी,
0: तुम्हारा है तुम लड़ो।
1: बचपन में कैसे थे, नटखट
0: अरे
1: थे,
0: बहुत
1: किस
0: ज्यादा।
1: तरह के, आपने बचपन को जिया है जैसे,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: किस
0: जी
1: तरह से जिया है, वो गांव का जो परिवेश होता है, घर में किस तरह से थे भाई बहनों के बीच,
0: बिल्कुल।
1: आप ज्यादा शरारती थे मेरे ख्याल से।
0: हाँ मतलब शरारती तो था ही, कमाल की बात यह कि जहां मेरा घर है ना गांव में, मेरे घर के बगल में गंगा नदी बहती है,
1: अच्छा।
0: नदी से इसलिए मैं बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ। और नदी के बगल में मेरा गांव घर, और वहां पे एक छोटा सा ही कस्बा है वो, जहां पे तीन तीन पिक्चर हॉल हुआ करता था, अब तो एक भी नहीं है, सिंगल स्क्रीन,
1: अच्छा।
0: और बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा गांव, तीन पिक्चर हॉल थे फिर भी छोटा था वो। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यार आप ना सिर्फ उस रास्ते पे चल रहे होते हो
1: जी
0: और सब कुछ लिखा हुआ होता है।
1: बिल्कुल।
0: आप यकीन माने मैं सिर्फ उस रास्ते पे चलता रहा और चीजें अपने आप होती चली गई। कई बार मुझे लगता है कि सच में मेरे साथ जादू हुआ है। एक लड़का जिस गांव में सिर्फ लोग पेट भरने के लिए सोचते हैं कि कहीं से नौकरी हो जाए 2 रुपए की और अपना जीवन यापन हम अच्छे से गुजार पाए, वहां एक लड़का सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जाना है मुंबई। बिहार में अमूमन सभी घर में, सभी माँ बाप चाहते हैं कि छोटी सी ही नौकरी पर हमारे बच्चे को एक नौकरी होनी चाहिए। और मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे दादाजी 5 भाई थे, और उनमें से 3 भाई इंडियन आर्मी में थे, पिताजी बिहार पुलिस में, चाचा लोग कोई असम राइफल्स में है, कोई BSF में है। वहां एक लड़का, अच्छा और भी कई सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, बट
1: अच्छा।
0: मैं सोचा कि नहीं मुझे तो जाना है मुंबई। तो ये थोड़ा सा मेरे घर वाले के लिए मुश्किल था।

0: कई बार मुझे ये लगता है थोड़ा सा फिलोसफी वाली बातें हो जाएंगी, बट ये जो हैप्पीनेस है मेरे लिए ये ना बहुत सब्जेक्टिव है, और ये सॉफ्टवेयर बचपन से इंस्टॉल होकर के आया है मेरे पास।
1: बिल्कुल,
0: मैं बेवजह खुश हो जाता हूँ कई बार।
1: वो खुशी कहीं ना कहीं अंदर ही है जिसे हम
0: हाँ
1: बाहर तलाशते हैं।
0: जी, और यही वजह है कि मुंबई भी मुझे लगा कि अरे ये तो हो ही जाएगा, ये तो मेरे लिए ही बना है भाई, मैं तो जाऊंगा मुझे काम मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: यही एटीट्यूड था मुझे। कभी भी शक नहीं हुआ कि अरे भाई ये लड़का से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे।
1: कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
0: हाँ
1: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। कौन
0: वाह,
1: सा गीत तो आप सुनवाना चाहेंगे?
0: एक बहुत प्यारा गीत है, गाने का बोल है, जब हम जवां होंगे जाने कहां
1: क्या
0: होंगे।
1: बात है, क्या बात है। बेताब फिल्म का ये गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।
0: यस।

0: बात चली है चंदन रॉय से, तो बचपन की बातें तो बहुत सी आपने की है,
1: हाँ
0: अब पढ़ाई से आपका कैसा नाता था, कैसा रिश्ता था?
1: जी,
0: देखिए पढ़ाई में तो थोड़ा सा मैं मतलब
1: बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ता था लेकिन हो ही नहीं पाता था मेरे से, मैं भूल जाता था चीजें। जैसे तारे जमीन पे जो प्रॉब्लम था ना उस बच्चे का, क्या मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था।
0: अच्छा
1: हाँ, आप मुझे बोल दो कुछ लिखने के लिए ना, तो कभी मैं हर्षी लिख दूं, कभी दीर्घी लिख दूं, किसी हिंदी में भी, तो था ये ना, चीजें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार, तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी हो गई कि ये मेरे को पीटते भी हैं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, मुझे SST बहुत अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ये सारे सब्जेक्ट सही लगते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती

0: सोचते कि अरे नहीं, आर्ट ले लेगा तो क्या ही करेगा जीवन में। दो तीन आंटी भी थी, वो भी कि नहीं, इसको साइंस साइंस ले लो।
1: और कहीं ना कहीं आपका सपना अभिनय में आने का था,
0: हाँ जी
1: तो
0: हाँ
1: उस
0: जी
1: तरफ रुझान शुरू से था।
0: हाँ। और जब भी कोई इस तरह की बातें करता था ना कि मेरे जो गोल है, एम है, उससे हटके बातें होती थी, तो मुझे लगता है ये मुझे ना वहां से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना कहीं और है, मुझे कोई और बुला रहा है, तो मुझे क्यों इस तरफ लेके आके आ रहे हो, है
1: बिल्कुल
0: ना। तो हमेशा मतलब 10th में भी बहुत ही कम नंबर आया, 12th में भी यही हाल था, मतलब किस तरह मैं पास हो गया। अगर
1: अच्छा
0: फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। हाँ, बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने मास कॉम ले लिया था।
1: ये आपने पटना से किया
0: हाँ जी हाँ जी।
1: जी।
0: तो मास कॉम इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अरे लाइट रहेगा, कैमरा रहेगा, माइक रहेगा, तो मैं थोड़ा सा ना सिनेमा के आसपास रहूंगा और थोड़ा जागरूक भी रहूंगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है
1: बिल्कुल
0: ये सब मुझे पता होगा। तो इसलिए मैंने मास कॉम किया। और हाँ, फिर मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं, जिसको हमेशा 52-53 आ रहा उसके लिए।
1: लेकिन आपके पसंद के विषय अब आ गए थे, आपका पसंद कहीं ना कहीं
0: हाँ
1: आ गया
0: जी
1: था,
0: हाँ जी
1: इसीलिए
0: हाँ जी हाँ
1: वो
0: जी
1: फर्क पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं ये अब महसूस करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है एक अभिनेता के लिए। तो
1: अभी आपके पसंद का दूसरा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं सुनने
0: देखो,
1: के लिए।
0: आज तो मैं सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि विविध भारती मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैं वही सब पुरानी चीजें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं दिनों को याद करता रहूंगा और उन्हीं दिनों के गाने भी सुनता रहूंगा। तो अभी मैं अपने पसंद का गाना बताना चाहता हूँ, अंदाज फिल्म का। अंदाज का कोई भी गाना चलेगा, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, जो अक्षय कुमार और प्रियंका और लारा दत्ता की फिल्म थी।
1: जी।
0: और

0: इस सवाल पे कि आपने अपना नामकरण खुद से कर लिया था, आपने अपना नाम बदल दिया
1: हाँ जी
0: है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, वो जरा बताइए कि क्यों बदला, कैसे बदला, राय की जगह रॉय, ये कहाँ से
1: ये
0: आया?
1: सवाल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका जवाब विविध भारती के पास है,
0: जी
1: क्योंकि लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे हम बायोस्कोप की बातें। तो एक बार उन्होंने 2 बीघा जमीन सुनाया और वो इस तरह से सुनाते थे पूरी कहानी को, फिल्म और फिल्म के पीछे की बातें, तो वो दिल को भा जाती थी। तो हमने डिसाइड किया था कि चंदन राय से मैं चंदन रॉय हो जाऊंगा, सिर्फ बिमल रॉय की वजह से। मुझे वो इतना कमाल लगा, 2 बीघा जमीन, तो इसकी ये कहानी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बचपन की बातें की थी, तो मैं ना एक छोटी सी कहानी याद करना चाहता हूँ, मैं भूल ना जाऊं। मेरे यहाँ ना, वही जैसा मैंने कहा कि मेरे यहाँ 3 पिक्चर हॉल था, तो एक तो शिवम टाकीज, अमरदीप और गंगा हुआ करता था। तो रामनवमी का समय और मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी थी, ये दिल आशिकाना। तो
0: बहुत बढ़िया।
1: मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो भाई चलना है फिल्म देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख चुका हूँ। तो नहीं, फिर से चलते हैं। और रामनवमी का समय था, पूरे शहर में जुलूस निकला हुआ था और इवनिंग शो, तो चला गया। बट वो शो का टाइम था 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे रात तक। 10 बज गए, 11 बज गए, घर के लोग मुझे ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया। माँ ढूंढ रही है कि भाई 1, 2, 3, चौथा बच्चा कहाँ है मेरा। मुझे याद है कि घर पे ना एक रिक्शा आया, उसमें वो एक बांधा गया चुंगा कि भाई एक लड़का खो गया है, इस रंग का है, शर्ट ये पहना है, नाम ये है, कहीं
0: अच्छा
1: मिले तो बता देना। तो इस तरह के घर पे ना वो शुरू हो गया था। और मैं उधर ये दिल आशिकाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, इस तरह गाने चल रहा, मैं एकदम सब कुछ भूल के फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म जब खत्म हुई और तब तक

0: 18 सारे 12 हो चुके थे, और मेरे जैसा मैंने कहा कि मेरे एक चाचा जी फौज में हैं, तो वो ढूंढ रहे थे बाइक्स पूरे महनार में। संयोग से पटेल चौक पर मैं मिल गया उनको, मेरे सारे दोस्तों भाग गए और उन्होंने मुझे पकड़ के जो पीटा बीच चौक पे, फौजी आदमी अपना जूता खोला और जूते से पीटना शुरू कर दिया उन्होंने मुझे, बहुत पीटा। फिर उसके बाद बाइक पे बिठाया, फिर घर लेके आया। मुझे लगे यार घर पे भी सब पीटेंगे अब मुझे। पूरे घर के जो भी लोग थे सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि भाई लड़का गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर मेरी माँ जैसे मैं गया हाथ पकड़ी घर में लेके चली गई, बट उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। हालांकि मैं मानने वाला कहाँ था, एक दो महीने के बाद फिर से पिक्चर के बिना मैं रह नहीं सकता था।
1: जी
0: मतलब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी फिल्म में,
1: रच बस गया था सिनेमा।
0: हाँ जी, तो ये बचपन की कहानी है, ये कहानियां

0: से गुजरा हूं, कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हकीकत है या सपने में हूं मैं। ये बहुत मुश्किल है, जो आप सोचो वो हो जाए, और बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो।
1: सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे।
0: बिल्कुल, कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो, खरीद लेंगे दूसरा
1: ये
0: चादर।
1: उभरते हुए कलाकारों के लिए ये एक मिसाल है, ये कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता है कि डरे
0: बिल्कुल
1: नहीं सपने देखने से,
0: हाँ,
1: और जो चाहेंगे वो होगा,
0: हो जाएगा,
1: बस वो मेहनत की जरूरत है
0: एक ही
1: और
0: जिंदगी मिली है
1: शक्ति।
0: ना। बिल्कुल मैम, एक ही जिंदगी मिली है, अपने हिसाब से जिएंगे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप एक समय के बाद ये तो कहेंगे कि जो मैं चाहता था वो हुआ। सफलता, सफलता तो बहुत ही सब्जेक्टिव
1: जी,
0: है ना,
1: मन की
0: और
1: खुशी।
0: मन की खुशी है। कभी ये नहीं, जैसे कई बार लोग लगते हैं अरे ये हासिल कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा।
1: जी
0: नहीं, वहां भी पूरा ब्लैंक ही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एक मुझे कई बार लगता है ना कि मरीच का जो होता है ना, वो धूप में जो दिखता है रेगिस्तान में, यही सफलता है। होता कुछ नहीं है वहां, लोग को लगता है अरे ये सफल, कुछ नहीं है सफलता। और मैं मुंबई में सफल असफल, नाम शोहरत पैसा, इन सब चीजों के लिए नहीं आया हूं। मुझे जब हेयर मेकअप करके स्क्रिप्ट अच्छे से समझ के मैं कैमरे के सामने होता हूँ माइक लगा के, वो खुशी मैं क्या बताऊँ आपको। मैं इसके लिए मुंबई में हूँ, ना कि
1: बिल्कुल।
0: मुझे ये सफल होना, मुझे ये बंगला गाड़ी घोड़ा। नहीं भाई, मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं सेट पे होता हूँ, एक कमाल की एनर्जी में होता हूँ। ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।
1: वो एक्शन और कट के बीच का जो लम्हा है,
0: ओहो,
1: कहीं आपने कही है बात, एक्शन और कट
0: बिल्कुल
1: के बीच का
0: बिल्कुल
1: लम्हा।
0: वही जिंदगी है मेरे लिए। वो जब एक्शन से पहले दुख दुख दुख दुख हो रहा होता है, जैसे ही एक्शन होता है, तो बेसिकली वो एक्शन हमारे लिए कट होता है कि पूरी दुनिया से हमें कट जाना है, और मैं और मेरा को एक्टर बस, जैसे ही कट होता है वो मेरे लिए एक्शन होता है बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए। तो वो जो एक्शन और कट में जो हम जी लेते हैं ना, वो वक्त, इसलिए जब आप ध्यान में होते हो, प्राणायाम करते हो, तो वही तो है ना, आप सबसे कट के उस मोमेंट में, उस शून्य में, उस
1: जी,
0: बिंदु पे रहते हो अभी भी।
1: मेडिटेशन,
0: बिल्कुल,
1: ध्यान।
0: मैं भी इसी तरह से उसको देखता हूँ और समझता हूँ कि उस लम्हे को जी लूं, उस पल को जी लूं। कई बार होता है, कई बार हम चूक जाते हैं, हर बार उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पाते, बट कोशिश होती है। उसके आसपास भी चला जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को जीने के लिए हम बार बार अभिनय करते हैं और पूरी जिंदगी यही करना चाहते हैं।
1: यहाँ पर जानना चाहेंगे आपकी पसंद का एक और नगमा।
0: ये दिल आशिकाना का जो टाइटल सॉन्ग है, ये दिल आशिकाना।

0: हम बातचीत कर रहे हैं दिल से यहाँ चंदन जी से, और हम पहुंचे थे बचपन को जीते हुए कॉलेज तक, पटना तक पहुंचे थे। तो वहां थिएटर से कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से थिएटर वहीं से शुरुआत हुई आपकी कॉलेज
1: क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मेरे यहाँ छठ, दिवाली, दशहरा ये सब बहुत धूमधाम से होता है। तो मेरे गांव में सब लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्ले लिखते थे और उसको खेलते थे। नाटक खेला जाता था हमारे यहाँ। ये बाद में समझ में आया मुझे कि नाटक ना वोट लेने की चीज नहीं है, इसको खेलना है, नाटक खेलना है, पात्र को खेलना है, उसको एंजॉय करना है। तो हमारे गांव में खुद से धनंजय चाचा जी थे, वो नाटक लिखते थे और वही पुरानी फिल्मों वाली नाटक, सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक,
0: जी
1: कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले लिखते थे वो।
0: जी
1: मैं उसमें बाल कलाकार के रूप में काम करता था और पूरी पूरी रात स्वेटर मफलर डाल के मंच के सबसे आगे बैठा रहता था। पूरा नाटक सुबह के 6-7 बजे तक बैठ के देखते रहता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है, मुझे मजा आ रहा है। तो बाल कलाकार के रूप में मैंने नाटक शुरू किया
0: जी
1: करना प्ले। फिर स्कूल में एनुअल डे पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे कुछ कुछ होता था, लेकिन एक बढ़िया से प्ले थिएटर थोड़ा गंभीरता के साथ वो

0: पटना कॉलेज में जब आया तो शुरू किया। वहाँ पे एक कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, तो इन दोनों जगह पे हम प्ले करते थे। और ज़्यादातर हम वहाँ पे स्ट्रीट प्ले किया करते थे,
1: अच्छा,
0: गांधी गांधी मैदान में।
1: कुक्कड़ नाटक जिसे
0: हाँ
1: कह रहे
0: जी,
1: हैं।
0: गांधी मैदान में सरस मेला और पुस्तक मेला लगता था, उसमें करते थे। और हालांकि मुझे थिएटर से एक समय पे मैं बहुत क्लियर था कि भाई थिएटर लंबे टाइम तक तो मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि थिएटर करने की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी नहीं है। कई बार वो वापस जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे, तो मुझे लगता यार ऐसी जिंदगी तो नहीं जीऊंगा मैं। बहुत अच्छा रंगकर्मी, बहुत शिद्दत के साथ वो काम करते थे, लेकिन मुझे ना डर लगता था कि यार ऐसी मतलब ऐसा कलाकार नहीं बनना मुझे। करेक्ट। तो मुझे ये था कि थिएटर में सिर्फ इसलिए करूं कि क्राफ्ट सीख लूं, तरीका सीख लूं, उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था। हालांकि अगर आप किसी थिएटर में जाए और उसको बोले कि भाई मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, तो वो बहुत बुरा मानते थे। उनको ये लगता था कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमें थिएटर से क्रांति करना है, बदलाव करना है। और मैं अपने मकसद में बहुत निराश सॉर्टेड था कि भाई मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे आप सिखाओ कैसे मंच पे रहना है, कैसे ऑडियंस रहना है, कैसे मतलब बेसिकली कैरेक्टर को कैसे हम उसके आसपास जा सकें, है
1: जी
0: ना, कैरेक्टर को कैसे अपने अंदर ला सकें, ये सीखना था मुझे। तो फिर कॉलेज खत्म करने के बाद पटना में मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहां पर JNU में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट, उसके साथ जुड़ा। उसके साथ भी मैंने कई खूबसूरत प्ले किए। साथ ही साथ मैंने NSD रिपेटरी में भी कुछ काम किया। आसिफ अली हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी वो NSD में फैकल्टी है, उनके साथ भी कई सारे प्ले किया। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरू रहा। मतलब थिएटर ऐसा था कि एक ऐसी लत थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। हालांकि जब से मैं मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में था थिएटर कभी छूटा नहीं। कई बार जब मैं दैनिक जागरण में जॉब करता था
1: बिल्कुल।
0: तो अगर प्ले का टाइम दोपहर का दे दिया रिहर्सल का, तो आप तो सब नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पूरे दिन आपका ऑफिस में गुजरता था।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को ऐसे हाथ में जो कच्चा पट्टी होता है ना बांध के मैंने भेज दिया था फोटो कि भाई मेरा हाथ टूट गया है, तो मैं टाइपिंग तो अब कैसे कर पाऊंगा, है ना, और इसलिए मुझे एक महीने की छुट्टी, अब तो नहीं आ पाऊंगा। और
1: अच्छा
0: मैं उस एक महीने में राग दरबारी, एक प्ले था श्री लाल शुक्ल ने लिखा है, तो वो प्ले मैंने किया। तो इस तरह की चीजें मैं करता रहा, है ना। मेरे लिए थिएटर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय।
1: तो पत्रकारिता की जॉब जो आपने की
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: नौकरी की है, वो भी इसीलिए की ताकि आप मुंबई आ सके, है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: बिल्कुल।
1: तो वो वहां पर कैसे आप पत्रकारिता में कैसे जुड़े, और उसके
0: जी
1: बाद वहां से रास्ता मुंबई के लिए कैसे बनाया?
0: तो ये था कि मुझे मुंबई जाना है, जाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे अपने पास तो है नहीं, घर वाले से मांग नहीं सकता क्योंकि आप चार भाई बहनों में सबसे बड़े हो, मम्मी पापा की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
1: बिल्कुल।
0: मेरे अलावा। और ये थोड़ा बड़ा अजीब भी लगेगा कि मुंबई मुझे जाना है तो मैं क्यों ही पैसा किसी से मांगू। तो मैंने किया जॉब दैनिक जागरण में। IIMC में जाने का एक ही था उद्देश्य कि वहाँ जॉब मिल जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, और हो भी गया दैनिक जागरण में। और वहाँ पर मुझे 11,800 रुपये मुझे मिलता था। और हालांकि कभी 11,800 शायद एक दो बार ही मिला होगा, क्योंकि कई बार छुट्टी में ले ही लेता था प्ले के सिलसिले में, तो कभी मेरे पूरे पैसे नहीं आते थे,
1: अच्छा
0: है ना।
1: जी।
0: और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ पैसे 3-4 महीने के लिए हो गए मुंबई में जाने के लिए, तो वैसे मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं आ गया मुंबई। गरीब रथ पकड़ा था निजामुद्दीन से, 7 अक्टूबर 2017 को आ गया था मैं।
1: अच्छा,
0: हाँ जी
1: बिल्कुल डेट याद है
0: हाँ जी,
1: एकदम।
0: उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
1: और वो जो कदम आपके पड़े थे मुंबई में,
0: हाँ
1: उसकी याद, वो जो पहला दिन था,
0: हाँ
1: उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए कि बस अब मैं मुंबई आ गया हूँ, तो कैसा रहा? पहले से प्लान करके आए थे कहाँ रहना है, किस तरह से वो दिन गुजरा, क्या प्लानिंग थी? अगर उस पहले दिन को याद करते आप, मुंबई के पहले दिन को।
0: पहले दिन तो ये था कि एक ऐसा लड़का जो इस महानगर में आकर के एकदम जैसे होता है ना कोई बदहवास गुमसुम सा लड़का किसी चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, अफरा तफरी मचा हुआ है, उस तरह से मैं महसूस करता हूँ अभी खुद को। जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कुछ भी आइडिया नहीं था। आज मतलब 8-9 साल पहले की बात है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो क्या हिम्मत था।

0: लड़के में आज का चंदन तो नहीं आता है ना,
1: जी
0: 50 चीजें सोचता। उससे मैं कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे लगा कि क्या होगा, बड़ी से बड़ी चीजों के लिए मैं तैयार था। मुंबई आया और बांद्रा रेलवे स्टेशन, वहां उतरा और सबसे पहले मतलब थोड़ा सा ये था कि सब लोग चले जाए, इस धरती पे पहली बार आया हूँ तो एक बार उसको थोड़ा सा नमन कर लूँ, प्रणाम कर लूँ।
1: अच्छा
0: तो मेरे बॉगी में जितने भी लोग थे वो सब उतर गए। उसके बाद जब देखा कि सब लोग उतर गए, फिर मैं चुपके से अपना इधर रुमाल नीचे गिराया
1: अच्छा
0: भाई कोई देख नहीं रहा ये क्या कर रहा।
1: अच्छा
0: फिर रुमाल के बहाने अच्छे से उस धरती को प्रणाम किया कि अब तो आ गया हूँ, जो होगा अब आपके हवाले है, आ गया हूँ तो रख लेना अपने पास, वापस जाने मत देना। और मन में ये भी विश्वास था कि आया हूँ तो अब सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। तो बस फिर उसके बाद से शुरू हो गया, रोज सुबह उठ के वही सत्तू पी के चावल दाल खा के निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और ये था कि मैंने इस महीने काम नहीं लिया
1: जी
0: तो फिर अगले महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो
1: हम्म,
0: हर महीने और हर दिन ये सोच के निकलता था कि आज मुझे एक दिन का भी काम मुझे ले लेना है। और उस समय तो टीवी में वो क्राइम अलर्ट, फेयर फाइल्स, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। तो मैं कहीं चोर बन जाता, कभी पुलिस बन जाता, कभी ड्राइवर बन जाता, कभी नौकर बन जाता। तो एक दो दिन, 3 दिन अगर महीने में मुझे काम मिल भी गया तो उससे मेरे महीने भर का गुजारा हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था मेरा।
1: कहीं आपने कहा है कि वो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं,
0: हाँ जी,
1: स्ट्रगल नहीं था वो काम करना या ऑडिशंस की तलाश करना, वो कहीं ना कहीं मजेदार था आपकी
0: मजेदार तो
1: जिंदगी की,
0: बिल्कुल
1: उस
0: था, बिल्कुल था।
1: है
0: वो
1: ना, उसको आप स्ट्रगल की तरह नहीं
0: कभी भी
1: देखते।
0: नहीं देखा, मुझे ये लगता है कि अगर वो दिन नहीं होते मेरी जिंदगी में
1: जी
0: तो मैं आज जितनी मजबूती के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, या मुंबई में हूँ, या कभी ऑडिशन पे या कहीं सेट पे जाता हूँ,
1: जी
0: ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता।
1: जी
0: तो वो दिन बहुत जरूरी थे, वो
1: बिल्कुल
0: अनुभव बहुत जरूरी था, तभी तो आज जब वो चीजें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत ज्यादा उड़ता नहीं हूँ, उछलता नहीं हूँ। क्योंकि मैंने वैसे दिन भी देखे हैं कि सच में मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो
1: अच्छा
0: मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था
1: अच्छा
0: क्योंकि वहाँ भरपेट अच्छा खाना मुझे मिल जाए,
1: जी जी
0: है ना। और जाता क्या था, एक दो दिन रुक ही जाता था मैं वहाँ
1: ओके
0: कि 2-3 दिन में जितना भरपेट खा लूँ ताकि फिर से मैं वापस जब आरामनगर बरसोवा में जाऊँ तो मेरे पास ताकत हो ऑडिशन के लिए, पैदल चलने के लिए। मैं पैदल बहुत चलता था,
1: जी
0: बरसोवा विलेज से निकलता था यारी रोड होते हुए आरामनगर, फिर वहां से 7 बंगला होते हुए, 4 बंगला सिग्नल के पास भी महाडा में कुछ ऑडिशन होते थे, वहां से होते हुए फिर इन्फिनिटी या फिर उधर यशराज लेन होते हुए शशि सुमित, ये सब मैं चक्कर लगाया करता था और
1: अच्छा
0: सब पैदल, क्योंकि ऑटो के पैसे बड़े महंगे मेरे लिए हो जाते थे।
1: बिल्कुल
0: तो मैं पैदल ही निकलता, कहीं पसीने से तर बतर हो गया तो रिसेप्शन पे 5-10 मिनट रुक के पसीने सुखा के अच्छे से उनसे थोड़ा पानी पी करके फिर मैं ऑडिशन देता था। और ये बदस्तूर चलता रहा। कमाल की बात ये है कि मेरे जूते बड़े गंदे हो गए थे, पुराने थे। अच्छा, मैं ये सब बात सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि
1: जी
0: ये चीजें मैंने देखा है, भोगा है, मेरे आसपास वाले सब जानते हैं,
1: जी
0: इसलिए ये सब चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके माध्यम से श्रोता को बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे जूते बड़े गंदे थे, बहुत पुराने हो गए थे।
1: अच्छा
0: तो मैं एक गया जूता लेने के लिए, अंधेरी स्टेशन के सामने एक शोरूम था, उसमें
1: अच्छा
0: तो मैं दुकानदार को बोला कि एक ऐसा जूता दो जो फटे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पैदल चलना होता है, मैं रोज 12 से 15-20 किलोमीटर चलता था ऑडिशन के लिए, तो और ऐसा दो कि ऑलरेडी गंदा ही दिखे।
1: अच्छा
0: हाँ, तो एक भूरा कलर का जूता मैंने पसंद किया, उसमें
1: अच्छा
0: सोल वगैरह कुछ नहीं था, तो वो जूता मैंने लिए और वही पहन करके पूरा ऑडिशन घूमते रहता था मैं।
1: अच्छा
0: तो इस तरह की दीवानगी और पागलपन था। और एक बार रघुवीर सर की जो मैडम है रोशनी मैम, उन्होंने देखा कि भाई जूते बड़े अजीब से हैं यार, तो उन्होंने रघुवीर सर के 2-3 जूते मुझे दिए जो पुराने मतलब जो नहीं पहनते थे वो,
1: अच्छा
0: तो उन्होंने मुझे 2 जूते दिए थे, तो वही 2 जूते फिर समझिए कि बहुत काम आया। फिर 1-1.5-2 साल तक वही जूते पहन पहन के मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं आज यहाँ बैठा हूं ना तो सिर्फ इसमें मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मदद है,
1: आशीर्वाद है
0: आशीर्वाद है। और वो
1: बिल्कुल।
0: लोग नहीं साथ में होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
1: चलिए हम सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
0: ओके।
1: कौन सा?

0: सुनवाना चाहेंगे आप?
1: विविध भारती पे जब आप पहले हेलो फरमाइश वगैरह सुनते थे ना, तो एक गाने का बहुत ज्यादा फरमाइश आता था, तो वो गाना आज भी मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो है मोहरा फिल्म का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैंने कहा था ना मैं सारे बचपन के सारे गाने लेकर
0: बिल्कुल
1: के।
0: बिल्कुल, सुनवाते हैं गीत।
1: हाँ जी।

ये थी जानी माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, और क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया? विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक रात एक बात लिखूंगी, तेरा नाम साफ साफ लिखूंगी। रोशन चांद ठंडी हवा लिखूंगी, तुझको अपने साथ लिखूंगी। तेरे हाथ में अपना हाथ लिखूंगी। हकीकत में तो तू मिला नहीं हमको, तो अपनी किताबें मोहब्बत में एक मुलाकात लिखूंगी। तू मेरा ना हो सका क्यों, ये सवाल लिखूंगी। तेरे दिल में ना हम समा पाए तो कोई बात नहीं, और हम बस तोड़े हैं ये बात लिखूंगी। हर कोई पढ़ सके इतना साफ साफ लिखूंगी। एक रात

जानते हैं वो, फिर भी अनजान बनते हैं। पूछते हैं हमसे कि आपकी पसंद क्या है, खुद जवाब होकर हमसे सवाल करते हैं। सुनो तुम, खुशबू की तरह मेरी हर सांस में अपना प्यार बसाने का वादा, सजाने का वादा करो। सिर्फ लफ्जों से इकरार होता नहीं, यक तरफा प्यार होता नहीं। मैं तुम्हें याद रखने की कसम उठाऊं, तुम मुझे ना भुलाने का वादा करो।

साहब ये बात मेरी खामोशी सुनाती है। एक तुम्ही को खुदा से मांगा है, जब भी मांगी कोई दुआ पास आओ, ये इल्तिजा सुन लो। प्यार है तुमसे बेपना सुन लो, इब्तिदा इश्क की हुई तुमसे, तुम हो चाहत की इंतहा सुन लो। इश्क भी तुमसे प्यार भी तुमसे, मेरे इंतजार की राहत मेरे दिल की चाहत हो तुम, आंखों से छलकता जान हो तुम, मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम, सिर्फ

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये मोहब्बतें, ये इनायतें, ये मसर्रतें, तेरे नाम मेरे हम कदम, मेरे हम नशी, ये रफाकतें तेरे नाम। कभी गुमशुदा, कभी रूबरू, कभी आईना, कभी अक्स तू, मेरे हम नवा, मेरी ख्वाहिशें, मेरे मोहब्बतें तेरे नाम। कभी ये हंसी, कभी ये नमी, कभी रंजिशें, कभी कुर्बतें, मेरी जिंदगी की ये सभी हसीन इबारतें।

मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है तेरी हर एक आदत से, तेरी बेजा शिकायत से, तेरी राहों में रुकने से, तेरे कदमों की आहट से, तेरी मुस्कुराहट से, तेरी आंखों के जादू से, तेरी बातों की खुशबू से, तेरी दिलकश अदाओं से, तेरे कातिल जफाओं से, मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है तुमसे।

ज्ञान की किरणों, तुम उसको छूकर पाओ ना। वो कब क्या करता है, वो जागता है या सोता है, वो शाम को कैसा लगता है, वो रात को कैसा दिखता है, जब सोए तो कैसा लगता है, जब जागे तो कैसा दिखता है। तुम चुपके चुपके जाओ ना, तुम उसको छूकर आओ ना। हम उसके बिना अधूरे हैं और जीना मुश्किल है। कानों में उसके कह दो ना कि कोई याद बहुत उसे करता है। ऐ चांद की किरणों जाओ ना।

0: साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

सुन रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुनहरी धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं ए आर रहमान और चिन्मय की आवाजों में गुरु फिल्म के गाने के साथ मुजवार के ही बोल और ए आर रहमान की है तर्ज।

एशियन सुनील किशोर कुमार और निशी कोहली की आवाजों में अनजान का लिखा और बॉबी लहरी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है नौकर बीवी का।

0: विविध भारती, विविध भारती देश का रेडियो।
1: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
0: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
2: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
1: विविध भारती पर हर पल है हाँ।
0: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
3: आज के फनकार
1: विविध भारती हर रोज लाते हैं ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
3: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधता।
0: विविध भारती, संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
4: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घुलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत। गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज,

कि सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जनचैनल वीर भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने। लीजिए सुनिए अलीशा चिनाय, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाजों में बंटी और बबली फिल्म का गाना गुलजार के बोल और तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

0: विभ भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विभ भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: चढ़ता है मोहब्बत का राग।
1: और राग
0: बसता है छाया गीत विभ भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: दोस्तों आइए सुना जाए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में नौकर फिल्म का गाना मजरूह सुल्तानपुरी के है बोल और आर डी बर्मन के है तर्ज़।

0: कि जमा पूंजी उनकी सीख
1: और हमेशा हमारी फिक्र करना।
2: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है
0: और क्लेम करना मुश्किल होगा।
1: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ। अब नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
0: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गेजे जंगबंग बंगानिखौ गोपातना बे एचआईवी एरांगछि बाथुग्रुकना आमजा आपसान चारमानिछि फायखाना दामसान जखालानिछि आपसान बाराखौ जखालदिमानि बा साक्कबुखौ दांथापानिछि खाखेखौ वेराबो खेन्ना बे आरो सागबा मानदिखौ मिथिना बे संसार दंगबा साखान्थिनां थिङा खादुङानिखौ आरो नालजुखानिखौ ना जोथोन खायङा नांगौ सेबां बाखिबा टेस्टिं सेन्टार उनारि आङि एचआईवीखौ परिखा खायनिबो आरो थालबाथे वेराना गता नेशनल टोल फ्री एचआईवी आरो एसटीआईनि हेल्पलाइन नम्बर 0079 कल खाबो बा breakfreeindia.org वेबसाइट उना नपांगेनिबो।
4: Let's listen to some stories of insurance.
5: Manu Bhai loved his bike. It had clocked 50,000 kilometers and didn't have a single scratch. He had taken great care of it. But sadly, Swati from the next building lost control of her steering. She apologized nervously. And Manu Bhai just smiled and said, Achha kiya, motor insurance liya. The damage will be covered.
4: In tough times, everyone says the same thing. Achha kiya, insurance liya. Visit achhakiyainsurancelia.com, an insurance awareness initiative by the General Insurance Council of India.
6: Achha kiya, insurance liya.
7: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
8: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
9: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
8: आपका साइबर रक्षक।
7: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
8: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
9: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
8: आपका साइबर रक्षक।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे धान की कटाई, मड़ाई और भंडारण में सावधानियां और साथ ही साथ योजना रहेगी प्रधानमंत्री मानधन योजना और इसके अलावा हम बात करेंगे मौसम के हाल की, मंडी के भाव की और कृषि सलाह और साथ ही साथ मनोरंजन भी हमारे इस कार्यक्रम में रहेगा।
4: बिल्कुल सही कहा मंजीत, और साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि जो योजना रहेगी वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भारत सरकार की लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसानों को प्रति माह 3,000 रूपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है। साथ ही यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी जिसमें पति या पत्नी को पेंशन का 50% यानी कि 1,500 रूपए प्रति माह पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है। साथ ही यदि हम कॉन्ट्रीब्यूशन या अंशदान की बात करें इसमें लाभार्थी की उम्र के अनुसार 55 रूपए से लेकर 200 रूपए प्रति माह तक जमा करने होते हैं और उतनी ही राशि केंद्र सरकार द्वारा जमा की जाती है। अगर 18 वर्ष की आयु में हम इस योजना से जुड़ते हैं तो हमें 55 रूपए प्रति माह देना होता है। 30 वर्ष की आयु में जुड़ने पर हमें 110 रूपए प्रति माह देना होता है और 40 वर्ष या उससे अधिक की आयु में जुड़ने पर हमें 200 रूपए प्रति माह देना होता है। और मंजीत, इसकी जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या होता है इस बारे में भी हमें बताएं।
3: अगर हम पात्रता की बात करें तो आवेदन करने की आयु होती है 18 से 40 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। और भूमि की बात करें तो भूमि की सीमा छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है वो उसके लिए पात्र है। और पंजीकरण या फिर नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण किया जाना आवश्यक है।
4: तो भाई ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो हमारा सभी से आग्रह है कि जरूर अगर आप पात्र हैं तो इस योजना का लाभ लें। और मंजित, आज हम धान की कटाई, मड़ाई और भंडारण में सावधानियों पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर दिनेश कुमार जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
5: डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
6: धन्यवाद
5: डॉक्टर साहब। हमारे किसान भाई बहन इस समय जो धान की फसल लगाई हुई थी अब उसकी कटाई का समय है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम धान की कटाई करते हैं तो हो सकता है कि पड़ोसी खेत में धान अच्छा पका हो लेकिन हमारी वो अभी स्थिति नहीं है, लेकिन देखा देख हम कई बार ऐसा निर्णय ले लेते हैं लेकिन बाद में उसका खामियाजा हमें मंडी में जाकर के भुगतना पड़ता है। तो धान की कटाई का सही समय क्या है, इसकी पहचान कैसे करें?
6: जी बिल्कुल, बहुत जरूरी होता है क्योंकि कच्चा धान काट दिया तब भी नुकसान होता है और अगर ज्यादा पक गया तब भी नुकसान होता है
5: जी।
6: तो सही दशा का जानना बहुत जरूरी है। आमतौर पे दाने का रंग जब पीला पड़ना शुरू हो जाए किसान भाई समझते हैं और खास करके लगभग 80-82% 25% बालियों का रंग जो है वो पीला पड़ जाए और फिर मुंह में जो है दाने को चबा के देखें कटकट की आवाज आती है तो किसान भाई समझ जाते हैं कि दाना हमारा पक गया है। और अगर हमारा दाना बहुत ज्यादा कठोर हो गया तो वो भी ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा नमी है उसमें तो भी ठीक नहीं। यानी दाने में जब 20-24% या 25% तक नमी हो तब हमें धान की कटाई करनी चाहिए।
5: मान लीजिए किसी कारणवश हमारे किसान भाइयों ने समय से पहले या देर से कटाई की, तो ऐसे में किसान भाइयों को कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं?
6: देखिए अगर जल्दी काट लिया धान हमने तो निश्चित तौर पर वो कच्चा धान रहेगा तो उसमें स्टार्च पूरी तरह से नहीं बन पाता, दाना सख्त नहीं हो पाता, तो एक तो उसकी गुणवत्ता सबसे पहले प्रभावित होती है। दूसरा उसमें चूंकि नमी ज्यादा होती है, पहले काटने का मतलब ये है कि उसमें नमी ज्यादा है तो उस पर कवक फफूंद और कीटों का हमला ज्यादा होता है क्योंकि दाने मुलायम होते हैं, तो सही नमी की दशा पे दाना काटने से हमें फायदा होता है, यानी कच्चे दाने हमें काटने से नुकसान होगा। अगर हमारा दाना ज्यादा पक गया तब क्या होगा कि एक तो मिलाई में उसकी दिक्कत आएगी और दूसरे वो झड़ जाता है और इसमें जो है चिड़िया वगैरह काफी नुकसान कर सकती हैं। दूसरे ज्यादा पक गया दाना हम इंतजार करते रहे कटाई का तो बरसात भी आ सकती है, बरसात आ गई तो उसमें नुकसान ज्यादा होगा। तो कुल मिला के एक सही अवस्था पे कटाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोनों अवस्था कम पका या ज्यादा पका ठीक नहीं होती।
5: डॉक्टर साहब, जब बात आती है कि कटाई का हम काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लेबर नहीं मिलती है गांव, श्रम नहीं है, या हमारा जो फसल है कि वो बहुत बड़े, हमने कई बीघे में लगाई हुई है, बड़ा हमारा मैदान है, हम बड़े उत्पादक हैं, तो ऐसे में जो कई बार हमारे आपस में सलाह होती है, बैठते हैं कि भाई हाथ से कटवाएं या मशीन से कटवाएं, अभी सामान्य बात नहीं है, आप वैज्ञानिक के रूप में इसको किस प्रकार से टिप्पणी करेंगे?
6: जी बिल्कुल, देखिए ये निर्भर करता है कि किसान के पास खेती कितनी है, किसान की आर्थिक स्थिति क्या है और धान का कितना क्षेत्र उन्होंने उगाया है या लगाया है। आमतौर पर हमारे देश पे आज भी बहुत बड़े हिस्से में जो है हाथ से दराती से कटाई की जाती है। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। जैसे दराती से जब हम कटाई करते हैं तो सही ऊंचाई पे हम काट सकते हैं, तो इससे हमें पराली बहुत ज्यादा मिल जाती है अपने दूसरे कामों के लिए, और साथ ही साथ श्रमिक जो होते हैं उनको रोजगार मिलता है। तो एक तरह से ये इसके फायदे हैं। नुकसान ये कि इसमें श्रम ज्यादा लगता है, किसानों का खर्चा ज्यादा आता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कंबाइन से कटाई की जाती है, उसमें घाई भी हो जाती है और सफाई भी हो जाती है, तीनों काम एक साथ हो जाते हैं। इसके अलावा रीपर एक मशीन आती है जो आजकल मोटर से चलने लगी, यानी इंजनों से चलने लगी, या फिर और तमाम तरीके की कटाई की मशीनें आजकल आ गई हैं, उनका प्रयोग भी करते हैं, तो उनसे क्या होता है आपके धन की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, ये सब बचत उसमें हो जाती है। तभी लगातार कंबाइन का प्रयोग जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के इलाकों में बढ़ा है और वहां की भी जाती है कंबाइन से कटाई। लेकिन इसकी भी कुछ दशाएं हैं, जैसे मान लो खेत में नमी ज्यादा है तो कंबाइन काम नहीं करेगी, दूसरा अगर आपका धान गिरा हुआ है तब भी कंबाइन काम नहीं करेगी, या रीपर है, रीपर से हम कटाई करते हैं तो रीपर में भी फसल हमारी सीधी खड़ी होनी चाहिए। कुल मिला के कंबाइन से अगर किसान भाइयों को कटाई करनी है या सुविधा उपलब्ध है तो आमतौर पर आपका खेत बड़ा होता है और बड़े खेत में ये कार्य सुगमता से किया जाता है। और इसमें एक ध्यान आपको रखना पड़ेगा, 15-20 दिन पहले खेत से पानी बिल्कुल निकालना पड़ेगा। अगर आपने पानी नहीं निकाला, बाद तक गीला रहा पकते टाइम, तो वो आपका कंबाइन काम नहीं कर पाएगी।
5: बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस समय खेतों में धान की कटाई तो चल ही रही है, तो इस धान की कटाई में जिन लोगों ने भाई फसल उठा ली है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी काम कर रहे हैं या एक उन्हें लग रहा है कि हम सप्ताह भर के भीतर अपनी फसल की कटाई शुरू करें, तो कटाई करते समय विशेष कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उत्पादन प्रभावित ना हो?
6: निश्चित तौर पर जैसे हम बात कर रहे थे, एक तो सही दशा का आपको पहचान करना है, जब सही दशा आए तभी आपको कटाई का काम करना है। दूसरी तरफ आपको मौसम की जानकारी लेनी, अगर आने वाले 2-3 दिन में मौसम साफ रहता है मान लीजिए तो आप कटाई करें, और अगर मौसम की भविष्यवाणी कहती है कि भाई नहीं कल को बहुत ज्यादा बारिश होगी तो 1-2 दिन आप कटाई टाल भी सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है किसान भाई सुबह ही कटाई शुरू कर देते हैं, यानी ओस जब होती है तब कटाई करते हैं, तो ध्यान रखें जब सूरज चढ़ जाए, धूप आ जाए, ओस निकल जाए उसकी, तब आप कटाई करें, नहीं तो कवक वगैरह का आक्रमण फसल में इस तरह से हो जाता है और दाने की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि मशीनों को अपनी तैयार रखें और उनका कैलिब्रेशन कर लें, उनकी क्या स्पीड रखनी है, कैसे उनका काम करना है, और इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप कटाई का कार्य शुरू कर सकते हैं।
5: डॉक्टर साहब, कटाई के बाद समय आता है जब हम कोई भी फसल काटेंगे तब उसके भंडारण का या हमें बाजार में बेचनी है, तो दोनों ही स्थितियों में हमें धान की फसल को काटने के बाद में कितने समय तक भंडारण की स्थिति में और बेचने की स्थिति में उसे रखना चाहिए खेत में?
6: जी बिल्कुल, देखिए जैसे कटाई किसान भाइयों ने की, कटाई करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसी दिन हम घाई कर सकते हैं, निश्चित तौर पर 2-3 दिन तक हमें अपनी फसल को सुखाना पड़ता है। निर्भर करता है कि किस अवस्था पे हमने धान को काटा है, यहाँ तक कि अगर सही अवस्था पे भी धान को हमने काटा है तो कम से कम 2 दिन उसको सुखाना पड़ता है, नहीं तो अगर हम मशीन द्वारा थ्रेशिंग कर रहे हैं या घाई कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आती है।

0: फसल है गिरी हुई है उसको बड़ी सावधानी से आपको काटना है। कई बार जड़ के साथ मिट्टी आ जाती है जिससे कि दाने की गुणवत्ता खराब हो जाती है, क्योंकि मिट्टी भी आपके दाने के साथ मिल जाती है। और दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना है कि कटी हुई फसल को पानी से भी बचाना है, कई बार बरसात आ जाती है तो उसका इंतजाम भी करके रखना है। आपको एक जगह अपनी फसल को इकट्ठा कर लें और फिर उस पर तिरपाल वगैरह ढक दें। सबसे महत्वपूर्ण होता है इस प्रक्रिया में, अगर हम अच्छा भंडारण चाहते हैं तो फसल को सुखाना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर हम थ्रेशिंग करते हैं, थ्रेशिंग के बाद फिर हम दानों को भी सुखाते हैं। सुखाते इसलिए हैं कि ज्यादा नमी उसमें रहती है, उससे कीट बीमारियों की समस्या आ जाती है। और फिर अगर जो किसान भाई उस धान की मिलिंग करना चाहते हैं या कुटाई करना चाहते हैं चावल, उसमें भी सही नमी की दशा का होना बहुत जरूरी है। तो ये खास एक बिंदु है, नमी की सही मात्रा उसमें रखना।
1: ये तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि हम मशीनों के द्वारा कृत्रिम रूप से भी दानों की नमी देख सकते हैं कि हमें उसको संतुलित अवस्था में रखना है ताकि उसका लंबा भंडारण चले और बीमारी या कीटों से हमारी जो फसल है वो बची रहे। वहीं बात आती है जब मढ़ाई की या गहाई की, तो इसको कब और कैसे करें जो हमारा उत्पादन अच्छा हो?
0: बिल्कुल, देखिए मढ़ाई और गहाई की जहां तक बात है, इसके भी कई तरीके हैं हमारे देश में। किसान भाई हमारे बाप दादा करते थे, बैलों से गहाई करते थे वो, फिर धीरे धीरे उसकी हाथ से पिटाई करने लगे धान की, जो कि आज भी ग्रामीण इलाकों में किसान भाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पहले धान के छोटे छोटे बंडल हाथों में लेते हैं, फिर वो किसी ड्रम पे या कोल्हू पे या जो हमारा मेड़ा होता है, पाटा होता है, उस पे पीट के धान को अलग कर लेते हैं। इसमें नुकसान या कमी इसकी ये है कि इसमें दाने में तुनके आ जाते हैं, कुछ अवांछित अवशेष हैं फसलों के वो आ जाते हैं या धूल मिट्टी आ जाती है, तो इसकी ओसाई करना जरूरी हो जाता है। ओसाई करना फिर उसकी सुखाई करना जरूरी होता है। दूसरी तरफ आजकल पैडल थ्रेशर आ रहे हैं, तमाम तरह के थ्रेशर हैं, जो मशीन होती है जो दाना निकालती है फसल से वो थ्रेशर होती है
1: जी।
0: तो जो हमारे थ्रेशर होते हैं उनसे हम दाना अलग करते हैं, इसमें बहुत सारी सावधानियां हमारे किसानों को बरतनी पड़ती हैं। थ्रेशर में जो आदमी काम कर रहा है सबसे पहले वो अपनी सुरक्षा करे, जो हमारे मुंह पे कपड़ा बांधे या मास्क लगा के करे, हाथ अंदर ना दे परनाला जो होता है जिसमें फसल लगाता है, और वहां पे कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह ना पिए, धुआं ना करें। पहली बात तो बीड़ी सिगरेट पीनी नहीं चाहिए, ये धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर भी अगर कोई कर रहा है तो उसमें हमारा जो लाख होता है फसल होता है उसमें आग ना लग पाए। तो और आजकल थ्रेशर से जैसे हम गाय करते हैं तो उसमें क्या होता है, नीचे पर नाले लगे होते हैं, सीव लगे होते हैं, चलनी लगी होती है, जिससे दाने की सफाई भी साथ साथ हो जाती है। इस तरह के दाने को फिर सिर्फ हमको सुखाना पड़ता है।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही जब थ्रेसिंग कर रहे हैं या मशीन के द्वारा हम अपने धान की मिड़ाई कर रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन अभी आपने बताया कि हमारे कहीं ना कहीं कहेंगे कि भारत में सबसे बड़ी जो संख्या है वो सीमांत किसानों की है, और सीमांत किसानों में हमारे किसान भाई बहन अधिकतर जो आपकी साधारण विधि रही जो आपने बताया कि भाई चाहे मेड़े पर उसको धान को पीटते हैं या ड्रम पर पीटते हैं, उसी के माध्यम से धान की मिड़ाई अक्सर देखी जाती है। तो ऐसे में दान के टूटने का बड़ा खतरा रहता है, तो क्या कुछ करें कि किसान भाइयों को नुकसान ज्यादा ना हो और दानों के टूटने से बचा जा सके?
0: बिल्कुल, देखिए दाने के टूटने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, और किसान भाई जानते हैं कि दाना अगर हमारा शुरू में ही टूट गया तो बाद में जब हम मिलिंग करेंगे, इसकी कुटाई करवाएंगे, तो दाना और ज्यादा टूटेगा
1: जी।
0: तो कुल मिला के सबसे महत्वपूर्ण इसमें नमी का बिंदु एक होता है, सही नमी पे कटाई, सही नमी पे गहाई करना बहुत जरूरी है, और सही नमी पे हमें भंडारण भी जरूरी होता है, यानी नमी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। दूसरी तरफ ये होता है कि बहुत ज्यादा सूखे दाने हैं हमारे, तो जो थ्रेशर है हमारा उसमें वो टूट सकते हैं, गीले दाने वो भी टूट सकते हैं। तो जो मशीन की चाल होती है, मशीन की चाल को भी नियंत्रित करना होता है। कई बार जल्दबाजी में उसको बहुत तेज हम मशीन को कर देते हैं जिससे दाने टूट जाते हैं
1: जी।
0: और बहुत कम अगर उसकी चाल है, तो मशीन की भी एक खास चाल होती है जिसपे दाने कम टूटते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और जो मशीन अंदर उसको हम लाख को डालते हैं हाथ से, उसमें भी कई बार जल्दबाजी करते हैं हमारे किसान, में बहुत सारा भर देते हैं उसकी, और मशीन कई बार तो बंद हो जाती, कड़कड़ की आवाज आती है। तो उसको भी आप सीमित मात्रा में जो आपके धान की फसल है कटी हुई उसको अंदर मशीन के डालें, इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अपनी सुरक्षा जरूर करें, तमाम तरह की मशीन चलती है, पट्टा लगा होता है आपके इंजन से या मोटर से, मशीन में ट्रैक्टर से लगा रहता है, कई बार पट्टा टूट जाता है, तो उसमें भी किसान भाइयों को अपनी सावधानी बरतनी है जिससे आपके स्वास्थ्य का आपके शरीर का कोई नुकसान ना हो।
1: बिल्कुल, ये अच्छा संदेश हमारे कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए है कि जब काम कर रहे हैं तो कोई चोट ना लगवा बैठे जब मशीन पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं, मड़ाई करने के बाद जैसे आपने कहा कि जो फसल के अवशेष हैं
0: जी जी
1: वो हमारी फसल में आ जाते हैं, इसको बिकने में भी दिक्कत आती है और भंडारण में भी वो समस्या उत्पन्न करते हैं
0: जी।
1: तो ऐसे में मड़ाई के बाद जो धान की सफाई करनी है वो कितनी आवश्यक है और कैसे की जाए, क्यों आवश्यक
0: जी? बिल्कुल, देखिए अगर हमारे धान में अवांछनीय तत्व है, मिश्रित है, हमारा धान शुद्ध नहीं है, उसमें हमारे कंकड़ पत्थर हैं, पत्तियां हैं, भूसा है या और भी सामान धानों में आ जाता है, तो निश्चित तौर पे पहली बात तो यह है कि चावल की गुणवत्ता ऐसे खराब होगी कि इस तरह के चावल में या धान में कीड़े बीमारी का हमला ज्यादा होगा अगर वो साफ नहीं है। साफ सफाई जैसे हम ही है, अगर हम अपनी साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमें बीमारियां लग जाएंगी। ऐसी हमारे दाने अगर साफ शुद्ध नहीं होंगे तो उनमें भी बीमारियों की संभावना होती है। दूसरा, बाजार में हमें दाम कम मिलेगा। तीसरा, अगर हम भंडारण करेंगे ऐसे जो दाना हमारा साफ नहीं है तो वहां भी भंडारण में भी दिक्कत आएगी। तो कुल मिला के एक है, सफाई करना बहुत जरूरी है, उसकी ओसाई करना बहुत जरूरी है। अगर हमने मशीनों से किया है काम तब तो कोई जरूरत नहीं होती, उसमें आमतौर पर हमें साफ दाना ही मिलता है, उस दाने को सिर्फ सुखाना होता है। लेकिन हाथ से अगर घाई की है, पिटाई की है दाने की, तो वहां सफाई करना बहुत जरूरी होता है। हमने देखा कुछ भाई छोटे किसान है, सीमांत किसान है, तो हाथ से जो कपड़े होते हैं उनसे जो है हवा देके और दाने को जो है ऊपर से बरसाई कर देते हैं और दाना हमारा साफ हो जाता है। लेकिन अब उतनी जरूरत नहीं है, अब बैटरी से चलने वाले पंखे आ गए, तमाम तरह के पंखे मिलते हैं जिनसे जेट देके हवा का, और फिर हम दाने को साफ कर सकते हैं। इस काम को बहुत जरूरी होता है करना, और इसके बाद फिर हम दाने को सुखाते हैं और फिर हम उसका भंडारण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो धान को सही ढंग से सुखाने की विधि क्या है, वैज्ञानिक क्या विधि रही?
0: देखिए, सुखाने के लिए पहले तो जैसे फसल की बात तो हो गई, अब हमने मान लो अपनी फसल की घाई भी कर ली और दाना भी हमारे पास आ गया, हमने बोरों में भी भर लिया, तो दो बातें हैं, या तो हम घर ला के सुखाते हैं उस धान को, या घर ला के हम अपने जो बार होते हैं, जगह होती है खाली जगह, या फिर छत पे भी कई बार धान को सुखाते हैं। दूसरा, खेत पे सुखा लेते हैं, खलियान में सुखा लेते हैं। जहां भी आप धान को सुखा रहे हैं आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी के ऊपर ना डालें उसको, कोई पक्का फर्श हो उस पे बिछाएं। पक्का फर्श अगर नहीं है आपका, कोई तिरपाल या कोई कपड़ा जो भी आपके पास हो उसको बिछा के उसके ऊपर दाना डालें, तब आप सुखाई करें। नहीं तो क्या होता है, अगर मिट्टी के ऊपर सीधा हमने दाना डाल दिया तो एक तो उसमें मिश्रण भर जाएगा तमाम तरह का, दूसरा मिट्टी की नमी दानों में आ जाएगी। तो कुल मिला के एक अच्छे से जो फर्श है उसपे दाने को बिछाएं और बीच बीच में उसमें आप पैर चलाते रहें या कोई यंत्र हो आपके पास उससे दानों को मिलाते रहें। नहीं तो क्या होता है, ऊपर के दाने सूख जाते हैं, नमी कम हो जाती है, नीचे के दानों में नमी ज्यादा रहती है, तो उससे फिर वो समान दानों में नमी नहीं रह पाती, तो इससे फिर हमारी जब कुटाई होती है, मिलिंग होती है, तो काफी चावल हमारा टूटता है। तो पैर से चला के जैसे भी आपको मिलाते जुलाते रहे और 3-4 दिन सुखाने के बाद आप इस तरह के दानों का भंडारण कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, भंडारण पर बात पहुंची तो भंडारण से पहले बैगिंग बड़ी आवश्यक है कि किस प्रकार से हम उन्हें रख सकते हैं ताकि लंबे समय तक हमारी फसल चलती रहे। तो धान की बैगिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, जो धान की बैगिंग की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले बोरों की बात होती है कि भाई बोरों में हम भरते हैं धान को, और वो बोरे ज्यादा पुराने ना हो, कटे फटे ना हो, उनमें जो है वो बीमारी या कीड़े मकोड़ों के अंश ना हो, पुराने दाने ना हो उनमें। तो पहले तो बोरा देखें, अगर आपको लगता है कि बोरे आपके खराब हो गए तो उनको निश्चित तौर पर आप बदल दें और नए बोरों में उनका भंडारण करें। पुराने बोरों का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका उचित उपचार करें। कुछ अगर नहीं होता है तो गर्म पानी में आधा घंटा एक घंटा उन बोरों को उबाल के अच्छी तरह से उनको फिर सुखा के आप प्रयोग में ला सकते हो। तो पहली बात तो बोरों की होगी, और जब हम बोरे भरते हैं तो ऐसा ना हो कि बोरे बहुत ज्यादा हम भर दें और फिर उनका मुंह भी ना बनने पाए या सिलाई ना हो पाए उनमें मुंह, तो इतनी मात्रा में धान को भरें जो उसमें आपके आ सकता हो आसानी से, और फिर आदमी को उठाना भी है, आदमी उसको उठा सकता हो, ट्रॉली में डाल सकता हो। इन बातों का हमें ध्यान रखना है, और जब हम भंडारण में लेते हैं तब भी इन बोरों की जो रखरखाव है वो बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न अंत में ये बन जाता है कि जो हम धान का भंडारण करते हैं तो जो गोदाम है, चाहे वो व्यापारी की दृष्टि से देखें या किसान भाई स्वयं अपने लिए भंडारण कर रहे हैं, तो गोदाम को कैसे सुरक्षित रखें और किस प्रकार का गोदाम होना चाहिए कि फसल का जो भंडारण है वो एक लंबे समय तक चले?
0: निश्चित तौर पर देखिए, भंडारण की सबसे जरूरी होता है कि पहले तो साफ सफाई बहुत जरूरी है, हमारा साफ हो, सूखा हो, हवादार हो और वहाँ पे बरसात के पानी के आने की संभावना ना हो। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है जो दीवारें होती है उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, टूटी फूटी होती हैं, तो उस तरह से उनकी अपनी दीवारों की और फर्श की भी आपको मरम्मत कर लेनी चाहिए जो आपका गोदाम है। और जो पुराने हमारे अनाज हैं, धूल हैं या मिश्रण हमारे पड़े हुए हैं, कीट है, उनकी साफ सफाई बहुत जरूरी होता है। और कोशिश करें कि जो चूहा और पक्षी आने की संभावना उनके भी रास्ते हम बंद कर दें। चूहों का नियंत्रण हमें एडवांस में करना है, दरवाजे वगैरह हमारे अच्छे हों जिनमें चूहा ना घुस पाए। और इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे और सही नमी पे हमारा धान होगा और उसका भंडारण करेंगे तो लंबे समय तक चलेगा। इसके लिए कोशिश करें कि नमी 13% से कम हो, 12% के आसपास नमी ठीक रहती है। और जो बोरे होते हैं हमारा उनकी ढेरी ना लगाएं, उनको स्टैक में रखें, उनको एक के ऊपर एक रखें और नीचे कोई पटला, कोई पन्नी या कोई उस तरह की चीज रखें, उनका भंडारण करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश कुमार, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के लिए दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: धान की कटाई, मड़ाई और भंडारण में सावधानियां और चर्चा कर रहे थे डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, पूसा, नई दिल्ली से।
3: तो मंजीत, जानकारी हो गई, अब थोड़ा सा हम मनोरंजन भी करना चाहते हैं, तो कौन सा लोकगीत सुनवा रहे हैं?
2: तो अब सुनते हैं

0: अभी आपने सुना ये लोकगीत, और अब मौसम का हाल भी जान लेते हैं।
1: मौसम की बात करते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की विदाई के बीच एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय रहने के कारण कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के मौसम की बात करें तो मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहने वाला है। अधिकतम तापमान करीब 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।
0: और आप अपने किसान भाई बहनों को मौसम आधारित कृषि सलाह भी दे देते हैं, तो किसानों को सलाह दी जाती है कि सरसों की आगेती बुवाई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा महक आदि के बीज की व्यवस्था करें तथा खेतों को तैयार करें।
1: इस मौसम में किसान अपने खेतों की नियमित निगरानी करें। यदि फसल व सब्जियों में सफेद मक्खी चूसक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो इमिडाक्लोराइड दवाई 1.0 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
0: साथ ही ये भी सलाह दी जाती है कि इस मौसम में किसान धान के ब्लास्ट यानी कि बद्रा रोग का आक्रमण होने की निगरानी हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर करें। इस रोग का सूचक है पत्तियों में एक छोटी आंख जैसा धब्बा जिसके अंदर का भाग हल्का भूरा और बाहर गहरे भूरे रंग का होता है। आगे जाकर अनेक धब्बे मिलकर एक बड़ा धब्बा बन जाता है।
1: और इसी के साथ इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण आरंभ हो जाता है और अंत में किसान खेत के अंदर जाकर पौधों की निचली भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण जरूर करें। यदि कीट का प्रकोप अधिक है तो इमिडाक्लोराइड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव जरूर करें।
0: और मंजीत, अब आजादपुर मंडी में फल सब्जियों के क्या भाव हैं ये भी बता दें। आलू बिक रहा है 15 रुपए किलो, वहीं प्याज का जो भाव चल रहा है वह है 25 रुपए किलो। टमाटर भी 25 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं बीन्स का जो भाव चल रहा है वो है 40 रुपए किलो। अगर हम खीरे की बात करें तो 30 रुपए किलो का भाव मिल रहा है।
1: रजनीश, जहां फल की बात करें तो इस समय फलों की स्थिति है, सेब 120 रुपए प्रति किलो, केला 25 रुपए किलो, अमरूद की बात करें तो 60 रुपए प्रति किलो, मौसमी की बात करें 30 रुपए प्रति किलो और पपीता है 25 रुपए प्रति किलो।
0: तो ये तो थे आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव। वही देखिए, आप कार्यक्रम का समय हो चला है और हमें अपने जो सभी किसान भाई बहन हैं, श्रोता हैं, उनके फीडबैक यानी कि उनके सुझावों का भी इंतजार रहता है, क्योंकि उनके सुझाव हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाते हैं। तो यदि आपका भी कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर लिख भेजें। हमारा जो ईमेल आईडी है वो है feedback@gmail.com।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: Sponsored program ho dana simang Kishan Bani va Kukruks Kuko Ministry of Agriculture aro Farmers Welfare ni thari gipako khnang na manaha aro sponsor program ko watani sumerang ba yanon bot naha Dr. Sani Jamano walni chat bajio deliani ko de Hindi kobor aro jol jol chat punga bajio English kobor ko absence station ko khnang na matian yan akashwani chura.

0: मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी के नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह फैसला छोटे और मझौले उद्यमों को विस्तार करने, उन्नत तकनीक अपनाने, विनिर्माण बढ़ाने, वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ने के लिए मंच उपलब्ध कराएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण पर टीम को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है जिसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की है।
2: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय इस जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीयों समेत 12 चालक दल के सदस्य घायल हो गए हैं। लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के लिए नमन धीर डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority. Briefing the media in New Delhi today after the cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the authority will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8%
4: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8% द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस वाटरवेज पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड एंड इंटीग्रेटेड Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
1: एक integrated transport and logistics authority का निर्माण किया जाएगा.
3: The government has also given the nod to the establishment of 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises. The cabinet today also passed a resolution congratulating Prime Minister Narendra Modi for completing 25 years as the head of government. Prime Minister Narendra Modi has said that today's cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. In a social media post, Mr. Modi said that it offers the platform for SMEs to scale up, adopt advanced technologies, expand manufacturing, enter global markets and integrate with global value chains. Voting concluded peacefully for the by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with the Lok Sabha seat in Assam. Polling took place for Madurandagam and Dharmapuram in Tamil Nadu, Tattanjavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. Senior BJP leader and Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has criticized Congress Party and leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi for repeatedly targeting the Election Commission of India and other constitutional bodies. Talking to media in New Delhi, Mr. Rijiju said political parties should serve the people and accept the electoral mandate. He accused the Congress Party of questioning constitutional institutions when it failed to secure public support. BJP spokesperson Pradeep Bhandari also accused the Congress Party of spreading false narratives through fabricated AI videos. Earlier in the day, opposition parties held a protest march from Parliament House to Nirvachan Sadan, headquarters of the Election Commission of India in the national capital, over alleged irregularities in the special intensive revision process and the demand of the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. However, while heading towards the Election Commission, security personnel stopped them near Akashwani Bhavan. The Ministry of Defence has signed a contract worth over 660 crore rupees with BrahMos Aerospace Private Limited for procurement of BrahMos fire control system and launcher for Indian Navy ships. The Defence Research and Development Organisation today conducted a successful flight trial of the indigenously developed high-altitude platform. On its successful flight trial, Defence Minister Rajnath Singh congratulated the team, saying it is an important milestone in India's Atmanirbhar Bharat journey towards realising a long-endurance stratospheric airship. The Nobel Prize in Physics 2026 has been awarded to Belgian-born scientist Francis Halsen, who turned an enormous block of ice at the South Pole into a detector for ghostly particles called neutrinos that reach Earth from outer space. In men's cricket, West Indies were 114 for 5 in 12.4 overs against hosts India in the first T20 international of 5-match series in Lucknow when reports last came in. Earlier, India won the toss and opted to field. After winning gold at the 2026 Asian Games and convincing 2-1 victory in the ODI series against West Indies, the hosts will aim to continue their winning run against the visitors. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। खेल जगत की हलचल, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मैदान से जुड़ी हर अहम खबर पर रहेगी हमारी पहली नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला लखनऊ में जारी। हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ी, खिलाड़ी के रूप में खेलती रहेंगी। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए महिला वर्ग में शेफाली और श्रीचरणी तथा अभिषेक और शुभमन गिल पुरुषों की श्रेणी में नामित। दिग्गज नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज का दबदबा। कार्लोस ने जापान ओपन और नोवाक जोकोविच ने चाइना ओपन टेनिस का खिताब जीता। और नेशंस लीग फुटबॉल में इटली और फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मुकाबला खेला जा रहा है। लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 18वें ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के लिए नमनदीप डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। क्या है मुकाबले की ताजा तस्वीर
1: प्रशांत? अभी भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी गेंदबाजी का फैसला किया था और वेस्टइंडीज की जो बल्लेबाजी है वो
0: जी?
1: काफी हद तक बैलेंस नजर आई है। अभी तक कप्तान शे होप ने 37 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली थी। उसके बाद कमिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रेवमन पॉवेल कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर सका, लेकिन शेरफिन रदरफोर्ड ने वहां पर पारी को संभालते हुए 30 गेंदों पर 46 रन बनाए और अभी भी क्रीज पर मौजूद है।
0: और अगर गेंदबाजों की बात की जाए, भारतीय गेंदबाजों की, तो अर्शदीप सिंह वापसी कर रहे हैं। एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका रही थी। भारतीय गेंदबाजों का कैसा रहा है आज का प्रदर्शन?
1: आज भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन प्रशांत काफी शानदार रहा है। अगर अर्शदीप सिंह की बात करें तो वो एक गेंद बची है उनके स्पेल में और अभी तक उन्होंने 30 रन दिए हैं, एक विकेट भी चटकाया है। वहीं नमन धीर ने आज अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है। 4 ओवर में उन्होंने 31 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए हैं। कुलदीप यादव ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट अपने नाम किया। मयंक यादव जो है वो थोड़े से महंगे साबित हुए आज।
0: आपने नमनधीर की बात की जिनका प्रदर्शन शानदार रहा है। 4 ओवर में उन्होंने 7.8 की इकोनॉमी रेट से 3 विकेट लिए हैं और आज डेब्यू भी कर रहे हैं। कैसा रहा है उनका सफर? अभी एक दिवसीय क्रिकेट में उन्हें मौका मिला था और बैक टू बैक अब T20 में भी डेब्यू कर रहे हैं।
1: बिल्कुल प्रशांत, आज नमनधीर के लिए काफी बड़ा पल है। वैसा ही प्रदर्शन उनसे अभी देखने को मिला है। काफी शानदार गेंदबाजी, 31 रन देकर 3 विकेट, किफायती गेंदबाजी करी उन्होंने। और ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने हाल ही में अपना डेब्यू किया था। एक मुकाबले में बल्लेबाजी का मौका मिला था जहां उन्होंने 30 रन बनाए थे 142 के स्ट्राइक रेट से। गेंदबाजी हालांकि साधारण रही थी पर एक विकेट उनको फिर भी मिला था।
0: और विशेष, 18 ओवर का खेल हो चुका है। वेस्टइंडीज ने 8 विकेट पर 160 रन बना लिए हैं और पहली इनिंग लगभग खत्म होने को है। कौन कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं स्क्वाड में आज भारत के जिन पर निगाहें होंगी, जो ये जो टोटल जो भी होगा, वेस्टइंडीज जो भी टारगेट सेट करेगी भारत के लिए, उसको चेस करने के लिए सशक्त रूप से मैदान पर उतरेंगे?
1: प्रशांत, भारतीय टीम का जिस हिसाब का बल्लेबाजी क्रम है, 200 रन का टारगेट भी भारत को छोटा नजर आता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा शुरुआत करते हैं, वहीं संजू सैमसन उनका साथ देते हैं, उसके बाद पॉकेट डायनमो ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर भी शानदार फॉर्म में है, तिलक वर्मा नीचे से बल्लेबाजी को संभालते नजर आएंगे और शिवम दुबे और नमन धीर फिनिशिंग के रोल की भूमिका निभाएंगे।
0: जी, फिनिशिंग रोल में नजर आएंगे और श्रेयस अय्यर ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया अपने बल्ले से और अपनी कप्तानी से भी। हाल ही में उन्होंने भारत को एशिया कप में गोल्ड मेडल भी दिलाया और मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अब तक की अपनी कप्तानी के अनुभव को भी साझा किया। आइए सुनते हैं।
2: I know it's a learning curve. It's just the starting phase of my captaincy and I'm sure that it is going to blossom in the coming matches as well. So it's important to stay in that state of equilibrium and not overthink about the past nor what future has got to offer. So I like to be in the present and see to it that we embrace the situation as much as possible and then react to it.
0: उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का आज अंत हो गया। अपनी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली हरमनप्रीत कौर ने अपना पद छोड़ दिया है। 37 साल की हरमन ने सोशल मीडिया पर महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। बतौर खिलाड़ी वो सक्रिय रहेंगी।
3: Women in blue finish atop the podium for a second time at this continental multi-sport showpiece. India successfully defend their gold medal from Hangzhou 2023.
4: हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सफलतम कप्तान है। हरमनप्रीत के कप्तान बनने से पहले भारतीय टीम देश और विदेश में बड़ी बड़ी टीमों को चुनौती तो देती थी लेकिन जीत से दूर रह जाती थी। 2016 में पूर्णकालिक कप्तान बनने के बाद हरमन ने टीम की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। अपनी 10 साल की कप्तानी में हरमन ने भारतीय टीम को न सिर्फ अलग अलग वैश्विक मंचों पर चैंपियन बनाया बल्कि टीम को एक मजबूत और सशक्त ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। 37 साल की हरमनप्रीत 2016 में पूर्णकालिक कप्तान बनी थी। उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला ICC इवेंट वनडे विश्व कप 2025 जीता था। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने चार बार यानी 2012, 2016, 2022 और 2026 में एशिया कप जीता। 2012 में वो अस्थायी कप्तान थी। हरमन की कप्तानी में भारतीय महिला टीम हांगझोउ एशियन गेम्स 2023 और आईची नागोया एशियन गेम्स में लगातार दो बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने हरमन की कप्तानी में ही सिल्वर मेडल जीता था और हाल ही में लॉर्ड्स में महिलाओं का पहला टेस्ट भी खेला गया था। हरमन की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने घरेलू टीम इंग्लैंड को हराकर इतिहास रच दिया। पिछले 10 वर्षों में हरमनप्रीत कौर ने भारतीय टीम का 5 टेस्ट, 51 वनडे और 155 टी20 में नेतृत्व किया। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
5: एंड दैट्स द थिंग अबाउट द वेट ऑफ बिलियन ड्रीम्स। व्हेन यू फाइनली लिफ्ट इट, इट फील्स एज लाइट एज द कन्फेटी फॉलिंग अराउंड यू।
0: उधर भारत की शेफाली वर्मा और श्रीचरणी तथा शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया। विशेष चारों ही खिलाड़ियों ने डोमिनेट किया पिछले महीने को, कैसा रहा उनका हालिया प्रदर्शन?
1: प्रशांत, अगर शेफाली के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने सितंबर में 7 टी20 मैचों में 72 की औसत से 184 की स्ट्राइक रेट के साथ 360 रन बनाए हैं। श्रीचरणी जो कि बाएं हाथ के एक स्पिनर हैं, उन्होंने 7 टी20 मुकाबलों में 18 विकेट चटकाए हैं और अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में है, उन्होंने 30 गेंदों में शतक लगाकर सबकी सुर्खियां बटोरी थी। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने वनडे में रिकॉर्ड तोड़ पारियां खेली और दोहरा शतक, अपने करियर का दूसरा दोहरा शतक भी लगाया था।
0: और आज के मुकाबले पर भी सभी की निगाहें अभिषेक पर होंगी। और अब चलते हैं टेनिस के कोर्ट की ओर, जहां नोवाक जोकोविच हो या फिर कार्लोस अल्काराज, उन्होंने अपने अपने खिताब जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने चाइना ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स फाइनल में उन्हें एडी मिनार से वॉकओवर मिलने के बाद ये खिताब उन्हें उनके नाम किया गया। वॉकओवर मिलने से पहले जोकोविच ने पहला सेट 7-6 से जीत लिया था। विशेष अगर हम देखें इस चैंपियन खिलाड़ी की अगर बात करें तो कोई भी टूर्नामेंट हो सबकी निगाहें इन पर ही होती है और एक बार फिर आज जोकोविच ने साबित किया है कि क्यों उन्हें इस कोर्ट का बादशाह कहा जाता है। कैसा रहा उनका ये सफर?
1: बिल्कुल प्रशांत, नोवाक डी जोकोविच ने अपने करियर में आज एक और उपलब्धि जोड़ दी है। एलेक्स डी मिनोर जो कि रिटायर्ड हो गए आज के मुकाबले में, उससे पहले ही जोकोविच 7-6 से पहला गेम जीत चुके थे। अगर इस टूर्नामेंट में उनके सफर की बात करें तो राउंड ऑफ 16 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में यूएस ओपन के विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी थी। सेमीफाइनल के दूसरे गेम में मेदवेदेव के बाहर हो जाने से उनको वॉकओवर मिल गया था। तो जोकोविच का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में शानदार रहा। साथ ही साथ अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें तो 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल उनके नाम है और 101 एटीपी सिंगल टाइटल उन्होंने जीते हैं। ये दर्शाता है कि किस दर्जे के जोकोविच खिलाड़ी हैं और किस तरीके का वो प्रदर्शन करते रहते हैं।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि रूस की एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा ने महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा को 6-2, 6-2 से हराया। विशेष पुरुष वर्ग का तो विजेता हमें मिल गया, लेकिन महिला वर्ग में अभी भी रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज कैसा रहा एकातेरिना और बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन?
1: प्रशांत, अगर चाइना ओपन महिला सिंगल्स की बात करें तो आज हुए चार राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में निकोला ने सिंजा क्राउस को 6-0, 4-6, 6-3 से शिकस्त दी। वहीं कैरोलिना मुखोवा ने जापान की नाओमी ओसाका को 7-5, 1-6, 7-6 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। अगले क्वार्टर फाइनल में मुखोवा का मुकाबला बार्तुनोवा से होगा। इसके अलावा मीरा एंड्रीवा और एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा ने डारिया स्निगुर और लिंडा नोस्कोवा को हरा दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में एंड्रीवा और अलेक्जेंड्रोवा आमने सामने होंगी।
0: विशेष ये तो हुई आज के मुकाबलों की बात, लेकिन कल कौन कौन से रोमांचक मुकाबले खेले जाने हैं?
1: कल काफी रोमांचक मुकाबले खेले जाने हैं प्रशांत। इवा जोविक इगा स्वाइटेक से मुकाबला करेंगी, कोको गॉफ एलिस मर्टेंस का और एलिना कराइवा क्वीन झेंग का सामना करेंगी और अंतिम मुकाबले में एन ली की भिड़ंत एलिना स्वेतलोना से होगी। इन मुकाबलों को जीतने वाले चार खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे। 8 अक्टूबर को क्वार्टर, 10 को सेमी और 11 को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।
0: उधर श्रोताओं, आपको बता दें कि कार्लोस अल्काराज ने जापान ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबलों में उन्होंने जिरी लेहेका को 7-6, 6-4 से हराया। विशेष यूएस ओपन के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे कि इस टूर्नामेंट को वो जीतेंगे, लेकिन कार्लोस अल्काराज क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गए। इस प्रतियोगिता को जीतना कितना अहम है उनके लिए?
1: बिल्कुल प्रशांत, काफी अहम है क्योंकि कार्लोस अल्कराज शानदार खिलाड़ी है और उन्होंने यूएस ओपन की हार को एक सीख की तरह लिया। ऐसा ही प्रदर्शन उन्होंने आज कुछ शानदार प्रदर्शन किया, जहां जिरी लेहका उनके सामने बेबस नजर आए और मुकाबले को उन्होंने 7-6-6-4 से गवा दिया। अल्कराज ने इस टूर्नामेंट में मैथ्यो को राउंड ऑफ 16 में, क्वार्टर फाइनल में डेनिस को और सेमीफाइनल में जोमे मुनार को हराया था। अल्कराज के करियर का यह 27वां सिंगल्स टाइटल है। इससे पहले उन्होंने 7 ग्रैंड स्लैम, 8 एटीपी मास्टर्स 1000, 10 एटीपी 500 और 2 एटीपी 250 टाइटल्स अपने नाम किए थे। तो जितनी लंबी यह लिस्ट है प्रशांत, अगर इसी रफ्तार से वे आगे बढ़े तो कई और मुकाम अपने नाम करेंगे।
0: और अब हम लोग चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। नेशंस लीग फुटबॉल में इटली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तुर्की को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ ही इटली प्रतियोगिता के ग्रुप A1 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। रॉबर्टो मैंसिनी ने इटली के मैनेजर के तौर पर लौटने के बाद घरेलू मैदान पर पहली जीत हासिल की है। सुनते हैं रिपोर्ट।
6: इटली ने प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। तुर्की के साथ हुए मुकाबले में इटली ने जियान लुका कामाका के पहले गोल ने उन्हें बढ़त दिलाई, लेकिन अराल सिमसिर के रीस्टार्ट के बाद तुर्की को बराबरी पर ला दिया। हालांकि बराबरी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि रिकार्डो कैलाफियोरी ने बेंच में आकर अपनी टीम को फिर से आगे कर दिया। इससे पहले पियो एस्पोटिस्टो ने आखिरी स्टेज में जीत पक्की कर दी। कई बार बाहर रहने के बावजूद तुर्की के खिलाफ 3-1 की जीत से पक्का हो गया कि इटली को यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफाइंग ड्रॉ में सीट मिलेगी। इटली के लिए स्कैमाका ने 3 साल बाद गोल किया था। पहले हाफ में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाने के बाद इटली ने सिमसिड के बराबरी गोल के बाद जोरदार जवाब दिया, जिसकी वजह से रिकार्डो और पियो के गोल हुए। तुर्की के स्ट्राइकर ने एक बार फिर खिलाड़ियों को छकाते हुए स्कोर 1-1 कर दिया। कैलाफियोरी ने बरेला की फ्री किक पर एक जबरदस्त छलांग लगाकर इटली को फिर से आगे कर दिया। इसके बाद एस्पोसिटो ने आखिरी समय में कमान संभाली, रोमानो के क्रॉस को नेट में डिफ्लेक्ट करते हुए इटली के लिए 13 मैचों में अपना 7वां गोल किया। इटली अपने आखिरी 2 ग्रुप मैच 12 नवंबर को फ्रांस और 15 नवंबर को बेल्जियम से खेलेगी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
0: पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के एथलीटों ने एशियाई खेलों में 12 पदक जीते। भारतीय दल में ASI के कुल 25 एथलीट शामिल थे। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने 1500 और 10,000 मीटर में रजत और 5,000 मीटर में कांस्य सहित 3 पदक जीते। सावन बरवाल ने मैराथन में रजत पदक जीता, जबकि सर्वेश कुशारे ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया। धनवीर ने 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मुक्केबाजी में अंकुश ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि नरेंद्र और कपिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। और एक बार फिर रुक कर लेते हैं पहले T20 क्रिकेट मुकाबले की ओर। क्या मौजूदा स्थिति है विशेष?
1: वेस्ट इंडीज 171 रन पर ऑल आउट हो गई है प्रशांत। 172 रन का लक्ष्य मिला है भारतीय टीम को। अक्षर पटेल ने आखिरी विकेट अपने नाम किया है, जिससे उनके विकेटों की संख्या आज 2 हो गई है। मयंक यादव को भी 1 विकेट मिल चुका है, जहां उन्होंने 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। शानदार प्रदर्शन रहा भारतीय गेंदबाजों का आज।
0: 172 का लक्ष्य मिला है, कुछ ही देर में भारतीय बल्लेबाज मैदान पर आएंगे 172 रन के लक्ष्य को चेज करने के लिए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव में स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.tir@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
7: देश में जिस तरह से GDP बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए PM गति शक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
4: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
7: कई देश ऐसे हैं जिसमें MSMEs बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का MSME ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड MSME और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
4: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
7: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत यह परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतकम में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजी नगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
2: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
3: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
4: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास पास एक फोन है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ।
2: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
3: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों का सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
1: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजिन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजिन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees, small and medium enterprises growth fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inked 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कैसे बना ये गाना?
1: जब मैं गाने के छोटे छोटे बच्चों के साथ भूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन,
1: बहुत ही बुरा किस्म

बाप को ये गाना फिल्माया गया था विनोद खन्ना पर।

बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। विभाजन के बाद विनोद खन्ना का परिवार आ गया मुंबई। यहाँ दिल्ली, मुंबई और देवलाली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे ये आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि मुंबई के सिड्डम कॉलेज से विनोद खन्ना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और इस तरह पहली पहली बार मंच पर उनकी एंट्री हुई। हालांकि विनोद खन्ना को बचपन से ही खेलों में रुचि थी, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के तो विनोद दीवाने रहे हैं। बाद में किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग का भी चस्का अपने आप में अपना लिया। हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक विनोद खन्ना की बलिष्ठ अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया।

उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके फिल्मी सफर में कई ऐसे पड़ाव भी आए जो किसी रियलिटी शो की कथानक वाली बात को साबित करते हैं, यानी कथानक की भांति ही लगते थे। सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्म मन का मीत में पहली बार विनोद खन्ना को मौका दिया और बना दिया फिल्म के नायक सोम दत्त के खिलाफ खलनायक। इस फिल्म की नायिका थी लीना चंदावरकर।

0: खलनायकी से शुरू हुआ विनोद खन्ना का फिल्मी सफर मील का पत्थर साबित हुआ। मीरा, इम्तिहान, इनकार और लेकिन जैसी भावना प्रधान फिल्में हों या फिर कच्चे धागे, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी, डाकू और जवान या फिर आखिरी डाकू और मेरा गांव मेरा देश जैसी हिंसा प्रधान फिल्मों में भी वे खूब जमे और जमकर खूब चले।
1: छोड़ दो, जब से उतना पागल नहीं है। तू जिस जमाने की बात कर रहा है उससे तो चंदन की गहराइयों में डूबे हुए भी जमाना हो।

अभिनेता विनोद खन्ना के करियर की खासियत ये रही कि उन्होंने हर चुनौती को, हर चैलेंज को स्वीकार किया और निभाया और बाद में अपने करियर को गंभीर भूमिकाओं के जरिए एक नया मोड़ भी।

गायनकार और गीतकार गुलजार ने 1971 में फिल्म मेरे अपने में बतौर नायक के रूप में विनोद खन्ना को चुना, जो उस फिल्म में समकालीन युवाओं का प्रतिनिधित्व

यहां से शुरू हुआ विनोद खन्ना के संजीदा अभिनय का सिलसिला, जो रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता रहा और चलता रहा। फिर आई गुलजार की मीरा और

इम्तिहान को पास किया और अपने करियर की दूसरी यात्रा में विनोद खन्ना को हासिल हुई लता मंगेशकर की फिल्म लेकिन, जिसमें गुलजार ने उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण और हटकर भूमिका प्रदान की थी। संजीदगी भरे अभिनय का कमाल देखिए कि बिंदास दिखाई देने वाले विनोद खन्ना को फिल्म चांदनी में यह भी पुकारना पड़ा।

0: विनोद खन्ना के रौबदार अभिनय का ये अंदाज भी आपने देखा और सुना होगा दोस्तों।
1: यहाँ एंथनी कौन है?
2: एंथनी नहीं, इधर कोई नहीं है साहब। वो बाजू के मामले में आएगा, तुम्हें तो पहले अपना भी देख के आएगा।
1: मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है।
2: ऐसा क्या?
1: जरूर दिखाएंगे सर, अपन बहुत फेमस आदमी। पेपर में आपको छोटे छोटे खड़े चपका लक्ष्मी मैन।
3: जिस बुढ़िया को मैंने खून दिया था उसको तुमने भी तो खून दिया था। तुम्हारा नाम ही तो एंथनी है ना?
1: हाँ सर, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में तो गोंसाल्वेस भी लगेगा। एंथनी गोंसाल्वेस, ऐसे बोलने का था सर अपना।
0: माना माना दोस्तों, अमिताभ का जमाना था, लेकिन विनोद खन्ना में भी वो तमाम खूबियां मौजूद थी जो एक सुपर स्टारडम के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब भी बिग बी और विनोद खन्ना साथ साथ आए, टक्कर बराबर की रही।

0: ज्ञानी
1: फोन हेरा फेरी
0: पर चिंता की कोई बात नहीं हम भी तेरे साथ
2: बिल्कुल।

1978 में अपने करियर के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद ने शरण ली अध्यात्म की और कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी, फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया एक्टिंग का सिलसिला। वापसी हुई और जोरदार हुई मुकुल आनंद की फिल्म मिली इंसाफ और युवराज सिप्पी ने उन्हें मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए विनोद ने फिर वही मकाम हासिल किया जो उन्हें पहले मिला हुआ था।

आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मसरूफ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय।

चल रहा था सिलसिला विनोद खन्ना की एक्टिंग का, और ये खुशनुमा दौर था 1999 में विनोद खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार।

थी कि उन्होंने अब चुनिंदा फिल्मों में काम करने की ठान ली। आपने उन्हें वांटेड और फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में जरूर देखा होगा।

इतनी लंबी अभिनय यात्रा के बाद 27 अप्रैल 2017 को गंभीर बीमारी की वजह से विनोद ईश्वर को प्यारे हो गए। दोस्तों, यकीनन जिस्मानी तौर पर बेशक विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों और अदाकारी के जरिए वो हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने एक्टर विनोद खन्ना पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज की फनकार।

0: जब धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना, जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। संगीतकार रवींद्र जैन,
1: सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बसा रहा घंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था वो जगह कौन सी है। दरवाजा खोलता हूँ तो किसी धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिनड और डिसाइडेड बाय माय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध

कुछ एग्जाम्पल आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, और क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया? विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेशी निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि ये अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। आयोग के अनुसार तय प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसी बैठकें निर्वाचन आयोग के परिसर में ही होती हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतकम में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की तट्टन चावड़ी सीट पर 80.81% तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर में 80.07% और नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

छायागीत कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज में बयां करना मुश्किल होता है। कुछ लम्हे यूं गुजरते हैं जैसे मुट्ठी में बंद रेत, मुट्ठी से फिसल कर झड़ जाते हैं। कुछ लम्हे सदी की तरह ठहर जाते हैं। इन ठहरे हुए लम्हों में दिल बेकरार रहता है, बेचैन दिल को सुनाई देती है कोई।

जिंदगी की राहों में कभी फूल बिछे होते हैं तो कभी कांटे, मगर दिल कहता है अगर साथ में प्यार हो तो हर सफर आसान हो जाता है। ये राहें अक्सर हमें कई मोड़ पर ले जाती हैं, कभी मुश्किलें, कभी इम्तिहान और कभी दिलकश सपनों की डगर। लेकिन इन सब के बीच एक जज्बा है जो हमें आगे बढ़ाता है, वो है प्यार। अगर प्यार करने वाले का साथ अधूरा ही छूट जाए तो जिंदगी वीरान निर्जन जंगल सी हो जाती है।

निगाहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमेशा हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं, कोई अपना हमें छोड़कर जाने ही नहीं देता। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका साथ हमें अपने गिरफ्त में ले लेती है। हम कई बार उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहां छोड़ पाते हैं, बस ये गीत गुनगुना कर रह जाते।